महापुरुषों के वचन श्रवण करके जिन्होंने उस तरफ अपना मुख कर लिया, उन्हीं के हिस्से लोक परलोक का संवरना आ गया। वरना तो जिसको सबसे अच्छा युग मानते हैं, उसी सतयुग में भक्त प्रह्लाद जैसे को उसी के पिता ने होलिका का सहारा लेकर जलाने का प्रयास किया, और त्रेता जैसे युग में भी ककई का इस्तेमाल करके मंथरा चाल चलती रही।

नंधर असुर संहारा सुयश कुमार विदित संसारा त्रिपुरा सुरसन युद्ध मचाई सब ही कृपा कर दीन बचाई किया तप ही भागीरथ भारी पूर्ण प्रतिज्ञा कसु पुरारी दानिन मह तुम सम को नाही सेवक स्तुति करत।

त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय रहो अब संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही, स्तुति के विधि करो तुम्हारी, शंभु नाथ अब

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विकसता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो।

0: पेश है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम को तैयार किया है सामुदायिक रेडियो गुड़गांव की आवाज ने। विश्व टीबी दिवस पर वार्ताकार है आरती। एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आप सबकी अच्छी सेहत और सही जानकारी के लिए हमेशा प्रयासरत है।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती। आज हम आपके लिए एक खास कार्यक्रम लाए हैं विश्व टीबी दिवस के उपलक्ष में, और मेरे साथ हैं भारत के कई उच्चतम डॉक्टर्स। मार्च 24 विश्व टीबी दिवस है। टीबी, जिसे हम तपेदिक या क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसके दुनिया भर के 1/4 से भी ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं। हम सबके आसपास टीबी है, चाहे वो गुप्त हो या सक्रिय। ये जानना बहुत जरूरी है। ये खतरनाक बीमारी है क्योंकि बिना इलाज के लगभग 50% मरीजों की मृत्यु हो जाती है। परंतु टीबी से बचना, उसके लक्षण पहचानना और इसका इलाज सही तरीके से कराना एक बहुत सफल प्रक्रिया है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि आज भारत के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हमारे साथ रेडियो पर आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर अनुराग भार्गव और डॉक्टर रजत गोयल। नमस्कार डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर गोयल। संक्षिप्त में थोड़ा अगर आप बताएं कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, जिसको हम क्षय रोग या तपेदिक भी कहते हैं, वो किस तरह की बीमारी है, कितनी खतरनाक है, फैलती कैसे है और भारत के संदर्भ में टीबी इतनी बड़ी चुनौती बनकर क्यों खड़ी हो गई है।
2: नमस्कार आरती, और आपके श्रोताओं को भी हार्दिक नमस्कार मेरी तरफ से। तो आज हम वर्ल्ड टीबी डे का जो है हर साल 24 मार्च को वो मनाया जाता है, जब सबको हम याद दिलाते हैं, जैसे आपने कहा कि अभी भी टीबी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जहां तक कि बहुत पुरानी बीमारी है। ये हजारों सालों से मानव के साथ ये बीमारी जो है रह चुकी है और अभी भी फैलती जा रही है। और जैसे आपने कहा, ये भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर दुनिया भर के केसेस में से भारत में 1/4 केस हम यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये बीमारी कैसे फैलती है? ये हवा से फैलने वाली बीमारी है, संक्रमित बीमारी है। जिसको किसी को टीबी हो, फेफड़े में जिसको टीबी हो, और वो व्यक्ति जब खांसी करते हैं या बोलते भी हैं, उनके सांस में ये छोटे छोटे कीटाणु के जो पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, वो बाहर आते हैं और हवा में फैलते हैं। तो जो लोग उनके आसपास हैं, वो मरीज के आसपास हैं या बहुत साथ रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा वेंटिलेशन वगैरह नहीं है, काफ़ी टाइम साथ बिताते हैं, उनके लिए ये रिस्क अधिक है कि उनको भी ये टीबी का इन्फेक्शन जो है वो लग सकता है। अब टीबी में जो है वो एक बहुत यूनिक चीज़ है कि जितने लोगों को इन्फेक्शन होता है, सब बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में अपनी इम्यूनिटी होती है, जो नेचुरल इम्यूनिटी है या बिकॉज ऑफ एक्सपोजर वो इम्यूनिटी बनी हुई है, जिससे ज़्यादातर लोग जो हैं वो टीबी के कीटाणु जब सांस से अंदर जाते हैं हमारे फेफड़े में, उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं और वो जो है बीमारी उस समय नहीं बनती है। परंतु क्या होता है कि जैसे भारत जैसे देश में जहाँ पे टीबी काफी कॉमन है, एक्सपोजर सबको ही किसी ना किसी टाइम पे हो ही जाता है, पर ज्यादातर लोगों को टीबी की बीमारी नहीं होती है। परंतु जब किसी भी टाइम अगर हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, जैसे कि शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी हो जाए, या कुपोषण हो, मैल न्यूट्रिशन हो, या फिर HIV जैसे बीमारी हो जिससे इम्यूनिटी कम होती, या कैंसर की दवाइयां ले रहे हैं और किसी टाइप के इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हो, उस समय ये बीमारी एकदम से दोबारा बाहर आ सकती है। इसका मतलब ये है कि जो कीटाणु हैं, ये हमारे किसी अंग में काफी सालों तक चुपचाप बैठ सकते हैं और बाद में वो कभी भी बीमारी बन के दिखा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो फेफड़े में टीबी होती है वो सबसे मतलब इन्फेक्शियस है और खतरनाक इसलिए है कि उसमें जो खांसी करते हैं उसमें कीटाणु बाहर आते हैं, वो फैल सकते हैं। टीबी जो है वो किसी भी अपने शरीर के अंग को प्रभावित कर सकती है, जैसे ब्रेन में टीबी हो सकता है, किडनीज में हो सकता है, अपने इंटेस्टाइन्स में हो सकता है, और बहुत कॉमनली लिम्फ नोड्स में हो सकता है, जहाँ जब जब बाहर से कोई स्वेलिंग दिखाई देता है उसको लिम्फ नोड टीबी कहते हैं। हड्डियों में भी हो सकता है, ज्यादातर उसे दर्द होता है और स्वेलिंग हो जाती है। इसलिए टीबी के जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो बहुत वेरीड हैं, बहुत तरह तरह के सिम्टम्स हैं। हमारे लिए चुनौती इसलिए है कि हमारा जो रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, जो सरकार का जो नियंत्रण कार्यक्रम है, वो कई सालों से चल रहा है और पिछले कुछ सालों में उसको थोड़ा ज्यादा इम्पेटस मिला है, उसको ज्यादा फोकस दिया है। प्रधानमंत्री ने ये भी सब घोषित किया था कि भारत में टीबी को कम हटाया जाए, एलिमिनेट किया जाए, और इसके लिए सब प्रयत्न होने चाहिए। तो पिछले कुछ सालों से इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जैसे डायग्नोस्टिक्स। कोविड में हमने देखा कि जो पीसीआर टेस्ट है
1: जी
2: वो लोग कराते थे टेस्ट के लिए, तो उसी तरह से टीबी के लिए भी एक पीसीआर टेस्ट है, जो रैपिड टेस्ट है, जीन एक्सपर्ट उसको कहते हैं, सीबी नैट कहते हैं। अब कई भारतीय कंपनीज ने उसी तरह के रैपिड टेस्ट बनाए हैं, जैसे ट्रू नैट है, और वो तरह जगह जगह में उपलब्ध किए गए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, अर्बन हेल्थ सेंटर्स, अस्पतालों में। तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा ये है कि एक ही दिन में टीबी का डायग्नोसिस हो सकता है। जब पुराना टेक्निक वो था कि स्मेयर माइक्रोस्कोपी, थूक को निकाल के उसको स्टेन करके देखते थे और उससे कई केसेस मिस हो जाते थे। तो बहुत जरूरी है कि जो ये नए टेस्ट हैं, जिसको हम मोलिकुलर डायग्नोस्टिक कहते हैं, उनको यूज किया जाए टीबी डायग्नोस करने के लिए। और टीबी के जो ड्रग्स हैं ये भी बिल्कुल फ्री, मुफ्त में मिलते हैं हर कोने कोने में देश के। और कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम भी शुरू किए हैं सरकार ने, और एमडीआर टीबी, जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, उसकी बातचीत अभी डॉक्टर गुलेरिया और बताएंगे, उसके लिए भी एक अलग ट्रीटमेंट प्रोग्राम है। ये सब कुछ मतलब मुफ्त मिलता है। और टीबी प्रोग्राम में ये भी है कि पेशेंट का सपोर्ट, उसका फॉलोअप, उसके बाकी क्या उसके घर के नीड्स हैं वो भी देखा जाता है, सोशल सपोर्ट भी देखा जाता है। पेशेंट को 500 रुपये महीने भी मिलते हैं
1: जी
2: थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये कई कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं सरकार ने, परंतु ये देखा जा रहा है कि टीबी बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसलिए हमें जानकारी सबके आसपास बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लोग जो हैं उनको आना चाहिए। कई कई बार लोग सोचते हैं थोड़ी सी खांसी हो गई है, बुखार है, ठीक हो जाएगा, या पास में दवा के दुकान में जाके दवाई लेते हैं, पर अगर 2 हफ्ते से ऊपर हो जाए और
1: जी
2: खांसी, बुखार, भूख ना लगना, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, अगर ये कंटिन्यू करें, तो किसी भी गवर्नमेंट के डिस्पेंसरी, हेल्थ सेंटर में जाके टीबी का टेस्ट जरूर कराना चाहिए।
1: जी तो आपने बहुत जरूरी जानकारी दी कि ये नहीं है कि हम खांस रहे हैं, कई हफ्ते निकल गए उस खांसी को और हम उसको आम खांसी ही समझ रहे हैं। उसका मतलब है 2 हफ्ते के बाद समय आ गया है कि हम हेल्थ सेंटर जाएं और जांच कराएं।
2: बिल्कुल
1: डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आपसे अगर हम पूछें कि भारत में टीबी के इलाज को लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं, कुछ चुनौतियां डॉक्टर सौम्या ने बताई, बट अगर आप बताएं कि टेस्टिंग में, इलाज में, बीमारी आगे ना फैले उसमें क्या चुनौतियां हैं, जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की हकीकत हमारे देश को जकड़े हुए है उसके ऊपर भी अगर आप कुछ जानकारी दें कि ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या है और क्यों ये शुरू हुई।
3: पहले मैं आपको आरती जी और आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगा। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे डॉक्टर सौम्या ने बताया कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो प्रिवेंटेबल है और अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो क्योरेबल भी है। लेकिन तब भी अगर हम देखें तो इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे ज्यादा जो डेथ्स हो रही होती हैं वो टीबी के कारण हो रही है। इसलिए ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम ठीक भी कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा डेथ्स इन्फेक्शियस डिजीज के कारण टीबी में हो रही है। इसलिए इसका टेस्टिंग, ट्रीटिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन्फेक्शन को जब कैसे रोकें ये भी बहुत जरूरी है। टेस्टिंग का जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि अगर किसी को फेफड़े का टीबी है और तो उसको खांसी, बुखार, अगर वो रहे 2 हफ्ते से ज्यादा ठीक नहीं हो रहा हो, तो ये बहुत जरूरी है कि वो अपना टेस्ट करा के ये पता करें कि उसको टीबी है या नहीं है, और अगर टीबी है तो उसका जल्दी इलाज हो जिससे वो बीमारी आगे और लोगों में ना फैले। इसके साथ साथ और अगर लक्षण हो, जैसे लो ग्रेड फीवर बुखार हो रहा है जो शाम को ज्यादा हो जाता है, भूख लगना कम हो, वजन कम हो, गर्दन में कुछ गांठें बन जाएं, तो आपको अपनी जांच करानी जरूरी है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम टेस्टिंग की बात करें, तो जब तक मरीज आगे आएगा नहीं, अपना टेस्ट नहीं कराएगा, तो डायग्नोसिस नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा। दूसरा, कई लोग ये डरते हैं कि हमें टीबी डायग्नोज हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या होगा। ये समझना जरूरी है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ट्रीटेबल डिजीज है और किसी को भी हो सकती है। तो
1: जी
3: इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको आगे आके अपना टेस्ट कराना चाहिए। और जैसे डॉक्टर सौम्या ने कहा कि जो फेफड़े का टीबी है, उसमें पहले हम बलगम की जांच करते थे, जो इतना पॉजिटिविटी रेट उसका कम था, 40 से 50% अगर बलगम आ रहा है। अब नए नए टेस्ट आ गए हैं, मॉलिकुलर टेस्ट आ गए हैं, सीबी नेट है, जीन एक्सपर्ट है, जिससे हम अगर बहुत माइनर सा इन्फेक्शन भी हो, कीटाणु कम हो, तो भी हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं और इसकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती है और ये भी पता चल जाता है कि ये सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट टीबी है। और
1: अच्छा
3: ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम में हर जगह अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अवेलेबल है। और ये बलगम की जांच भी कर सकते हो, अगर कहीं और भी टीबी हो तो वहां से भी हम सैंपल लेके, चाहे वो गांठ में हो या छाती में पानी हो या पेट में पानी हो, उसकी जांच करके भी ये देख सकते हैं कि टीबी है या नहीं है। तो इसलिए टेस्टिंग जो है ये अब काफी आसान हो गई, और टेस्ट के नए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आए हैं उससे रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती है और उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिटी जो हम कहते हैं वो ज्यादा बहुत अच्छी है। लेकिन लोगों को आगे आके अपना टेस्ट कराना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं कराएंगे, अगर वो अपने टेस्ट नहीं कराएंगे, तो डायग्नोसिस नहीं होगा और बीमारी ज्यादा फैलेगी। ये भी जरूरी है कि हम ये देखें कि ये फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल हो, टेस्टिंग के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, कार्टरेज चाहिए, वो भी सब जगह हो, और सरकार उस पर रेगुलरली काम कर रही है कि टेस्टिंग जो है हर जगह पे फ्रीली अवेलेबल हो। अगर एक दफा डायग्नोज हो जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट की बारी आती है। अब है तो ये ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया के कारण है, इन्फेक्शन है, लेकिन ये जो कीटाणु है बहुत तेज कीटाणु है, बहुत चालाक कीटाणु मैं कहूँ है, क्योंकि इसमें दो चीजें बहुत है। एक तो ये बहुत जल्दी रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है, अगर हम एक दवाई दें तो दवाई कुछ दिनों बाद असर करना कम कर देती है। और ये लोगों ने पहले देखा, जब ये नई दवाई आई थी स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी के ट्रीटमेंट के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो लोगों ने सोचा हम टीबी पे पूरी तरह से काबू कर लेंगे। उन्होंने सब लोगों को, जो टीबी वाले लोग थे, उनको एक एक इंजेक्शन देना शुरू किया, लेकिन एकदम पता चला कि एक दवाई से ही एक कीटाणु मरता नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट डेवलप करके इसमें असर दवाई का कम हो जाता है। इसलिए टीबी ऐसी बीमारी है जिसमें ज्यादा दवाइयां देनी पड़ती, जिससे वो कीटाणु जो है वो पूरी तरह से मर जाए, और अगर उसमें कोई रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी हो वो भी मर जाए। इससे लोग ये परेशान हो जाते हैं कि हमें चार चार दवाइयां लेनी पड़ती हैं, ज्यादा दवाई लेनी पड़ती, लेकिन वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम जड़ से बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, वो दवाइयां जो है वो सारी जरूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर तो ऐसी ज्यादा दवाई दे रहे हैं और अपनी तरफ से वो कम कर देते हैं, जिससे
1: जी
3: आगे जाके उनको रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है और इससे नुकसान ज्यादा होता है। दूसरा चीज ये है कि जो ये कीटाणु को अगर हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये जैसे डॉक्टर सोमी ने कहा कि कभी दफा छुप जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है, तो इसलिए दवाई जो है वो लंबे अरसे तक देनी पड़ती है। तो टोटल ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने का है। पहले 2 महीने में हम जो इंटेंसिव फेज कहते हैं, ज्यादा दवाई देते हैं, फिर कम कर देते हैं, लेकिन ड्यूरेशन भी कम ज्यादा है। तो टीबी को ट्रीट करने के लिए, चाहे है तो एक आम बैक्टीरिया, ट्रीटमेंट जो है ज्यादा चैलेंजिंग है, ज्यादा दवाई देनी पड़ती है, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए देनी पड़ती है। पर लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर हम ये दोनों चीजें करें, दवाई भी पूरी लें, पूरा ड्यूरेशन लें, तो हम बीमारी को जड़ से निकाल सकते हैं, फिर से तकलीफ नहीं होगी। और अगर हम दोनों चीजों में डील कर दें, तो हम इस कीटाणु को एक मौका देते हैं कि वो रेजिस्टेंट बन जाए और आगे जाके फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसलिए लोगों को ये समझना जरूरी है कि ट्रीटमेंट रेगुलरली लेना जरूरी है और सारी दवाई लेना जरूरी है। कुछ लोग दवाई कम कर देते हैं, कुछ उसका डोज कम कर देते हैं, दोनों से आपको नुकसान होगा। तो ये मरीजों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमने टीबी की लड़ाई जीतनी है और आपने बिल्कुल ठीक होना है, तो अपनी दवाई पूरी लें। अगर दवाई लेने से आपको कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि हर एक दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके लिए हम ऑल्टरनेट दवाई भी दे सकते हैं, डोज एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से दवाई को आप कम ना करें, क्योंकि वो इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है।
1: जी
3: अगर आप पूरा इलाज करोगे तो बीमारी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो ये बात एक बहुत जरूरी है। दूसरा रहा कि इन्फेक्शंस कितना है, हम इसको आगे कैसे रोक सकते हैं। अब टीबी हमारे सारे बॉडी में किसी भी अंग में हो सकती है। लोग कहते हैं कि टीबी कैन इन्वॉल्व एनी ऑर्गन, एंड कॉज एनी टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर
1: ओके
3: टीबी हो तो आपका यूट्रस भी बढ़ सकता है, तो कभी कभी पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं और कई लोगों को लगता है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इसलिए पर ये बहुत जरूरी है समझना कि जो फेफड़े की टीबी है वो ही ज्यादा इन्फेक्शियस होती है। अगर आपको पेट की टीबी है, स्पाइन टीबी है, रीढ़ की हड्डी की टीबी है या गांठों की टीबी है, आप दूसरे किसी को ही फैला नहीं सकते, आप ये आप नॉन इन्फेक्शियस हो। तो अगर आपको सिर्फ खांसी बलगम है और बलगम में टीबी डायग्नोज होता है तभी आप इन्फेक्शियस हो। इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं कि अगर किसी को गांठ की टीबी है कि वो अब खाना अलग कर दे, लोगों से मिलना कम कर दे, ये घर वालों से ना मिले, क्योंकि आप नॉन इन्फेक्शियस हो। दूसरा, अगर आपको फेफड़े का भी टीबी है तो अगर आप दवाई अपनी रेगुलरली लोगे तो 3 से 4 हफ्ते में आपके बैसिलरी लोड जो हम कहते हैं कीटाणु इतने कम हो जाएंगे और कीटाणु मर जाएंगे कि आप नॉन इन्फेक्शियस हो जाओगे, और फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप किसी और को टीबी दे सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि जो फेफड़े के बाहर का टीबी है वो इन्फेक्शियस नहीं है, और अगर जो फेफड़े में टीबी है वो भी अगर हम दवाई रेगुलरली ले तो 3 से 4 हफ्ते में हम नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं, और उसके बाद हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम औरों को टीबी नहीं फैला सकते। अपना खाने पे और डाइट पे पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो हम जल्दी इस बीमारी से ठीक होंगे। फिर आपने पूछा था एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। अगर हम देखें तो इंडिया में जो एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस का बर्डन है वो काफी हाई है, ऑलमोस्ट हम ये कहते हैं कि 27% ऑफ जो सारे जो एमडीआर के केसेस हैं दुनिया में वो इंडिया में पाए जाते हैं, और ऑलमोस्ट 1.24 लाख पेशेंट्स जो हैं एमडीआर के वो भारत में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसका हम ब्रेकअप देखें तो नए केसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 2-3% ही हैं। लेकिन
1: अच्छा
3: अगर हम देखें जिन्होंने ऑलरेडी पहले ट्रीटमेंट टीबी का लिया हुआ है उनमें ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम एमडीआर कह रहे हैं वो ऑलमोस्ट 11 से 16% है। इसका ये मतलब कि जिन लोगों को पहले टीबी हुआ है और अगर उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा उन्होंने इरेगुलर किया है तो उनको फिर रेजिस्टेंट टीबी होने के कारण चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए जैसे मैं पहले कह रहा था कि आपको अपने इलाज पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इलाज पूरा नहीं करोगे तो आपको रेजिस्टेंट टीबी के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और इसका कारण क्या है? एक कारण तो यही है कि अगर आप दवाई पूरी तरह से नहीं ले रहे हो उससे हो सकता है, कई दफा ये भी हो सकता है कि आपने बीच में दवाई छोड़ दी फिर ली, उससे भी रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है। कई दफा अगर आपको किसी और व्यक्ति से आप कॉन्टेक्ट में आए जिसको रेजिस्टेंट टीबी था तो आपको वही इन्फेक्शन हुआ, जो कीटाणु ऑलरेडी रेजिस्टेंट बन गए थे, तो उससे भी कभी कभी एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना कि टीबी का जो ट्रीटमेंट जो रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है वो कई इट इज जो हम कहते हैं मैन मेड प्रॉब्लम है। अगर हम प्रॉपरली ट्रीट करें इसको तो हम रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को कम कर सकते हैं। तो इट इज व्हाट वी से फेलियर टू टेक द ट्रीटमेंट नॉट फेलियर ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर हम दवाई नहीं लें तो हम रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होंगे, अगर हम दवाई पूरी लेंगे तो हम रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को रोक सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम डायग्नोसिस जल्दी करें, ट्रीटमेंट पूरा करें, और इससे घबराएं नहीं कि हमें टीबी हो गया तो हम दवाई ना लें। अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो हम एमडीआर के केसेस को कम कर सकते हैं। एमडीआर में जो चैलेंज है वो टीबी से जो हम आम टीबी कह रहे हैं उससे ज्यादा है, क्योंकि इसमें दवाइयां भी अलग सी हैं, दवाइयों का ड्यूरेशन भी लंबा है और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा हैं। इसलिए एमडीआर टीबी अगर किसी को हो जाता है तो उसको फिर पूरा इलाज करना चाहिए, और इसमें सरकार के बहुत ज्यादा स्कीम्स हैं, सारी दवाई मुफ्त मिलती है। अगर हम टीबी की बात करें तो डॉट सेंटर से आपको दवाई सारी मुफ्त मिलेगी, जैसे डॉक्टर सोमिया ने कहा कि और भी कई गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी हैं,
1: सुविधाएं
3: जैसे निक्षय पोर्टल में आपको पैसे भी मिलेंगे, न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो हम सबकी चीजें अगर हम साथ साथ करें तो ड्रग सेंसिटिव और ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस दोनों का ट्रीटमेंट फ्री है, दोनों की दवाइयां भी अच्छी हैं, और नई नई दवाइयां भी आई हैं जो अवेलेबल हैं सरकार के थ्रू, तो उससे काफी हद तक लोग ठीक हो जाते हैं, उसका क्योर भी हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि टीबी से घबराना नहीं है, ये एक पूरी प्रिवेंटेबल और क्योरेबल डिजीज है, लेकिन इसका इलाज लंबा है और वो करना बहुत जरूरी है।
1: शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर रणदीप। अब हम चलते हैं डॉक्टर अनुराग भार्गव के पास। डॉक्टर अनुराग, हर साल 28 लाख भारतीयों को सक्रिय यानी एक्टिव टीबी होता है और अनुमानित 3 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अभी भी टीबी के विरुद्ध कोई कारगर टीका इजाद नहीं हुआ है, तो आप टीबी से बचाव के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं? आपने इस पर झारखंड में भी एक शोध किया है, इस पर सुझाव और जानकारी हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ साझा करिए।
4: पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसे डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर सौम्या ने बताया है, उन्होंने उन्होंने जो जानकारी दी कि टीबी एक, हालांकि इसके लिए 100% कोई वैक्सीन नहीं है, फिर भी ये कई हद तक प्रिवेंटेबल है। और जैसे डॉक्टर सौम्या ने बताया कि सबसे जो हमारे पास ठोस चीज है इसको रोकथाम करने के लिए, वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी है। तो अधिकांश लोग जिनका टीबी के कीटाणु से सामना होता है, वो सक्रिय टीबी में वो परिवर्तन नहीं होता है, वो गुप्त गुप्त संक्रमण या गुप्त या टीबी इन्फेक्शन के स्टेज पे ही रह जाता है। तो अगर हम, और मैं अब थोड़ा सा, क्योंकि तकनीकी जानकारी साझा हुई है, मैंने ग्रामीण एरिया में करीब 15 साल काम किया, छत्तीसगढ़ में और फिर झारखंड में एक शोध कार्य में। तो वहाँ इसकी जो हमको टीबी की समस्या को उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि में भी देखना बहुत जरूरी है। तो हम कहते हैं कि सबको टीबी हो सकती है, मगर टीबी के कीटाणु से सामना, गुप्त संक्रमण का जो परिवर्तन है सक्रिय टीबी में, और उसके बाद जो कुछ लोगों में मौत होती है, अधिकांश अगर हम देखें तो अभी भी गरीबों में होती है। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये विश्व में हर जगह जहां भी गरीबी है, गरीबी का मतलब ये भी होता है कि उनकी जो रहने की व्यवस्था है, जो खाने खान पान की समस्या है, वो एक चीज है, और दूसरा है ये लोग जो स्वास्थ्य सेवा है उनसे भी उनको उनमें उनको लेने में या उसमें कठिनाई है। तो दोनों पहलू हैं। तो जैसा डॉक्टर सौम्या ने बताया कि अगर हम 5 मुख्य कारण देखें जिसके कारण गुप्त संक्रमण, सक्रिय संक्रमण या एक्टिव टीबी में हो जाता है, उसमें मुख्य कारण इंडिया में कुपोषण है, और खास तौर पे एडल्ट्स में या वयस्कों में कुपोषण भी एक समस्या है। हम ज्यादातर माताओं में और बच्चों में कुपोषण की बात करते हैं, बट इंडिया में अगर हम मेहनत का श्लोक देखें उनमें भी कुपोषण है। तो इंडिया में दोनों समस्याएं हैं, कुछ जगह हमें अभी मोटापा की समस्या देख रही नहीं आ रही है, मगर अगर हम एक खास वर्ग को देखें तो उसमें कुपोषण अभी भी वो है, और करीब 18% महिलाएं और 16% जो पुरुष हैं वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में उसमें कुपोषण पाया गया। तो अगर हम इन आंकड़ों को परसेंटेज से अगर मिला के देखें, करीब 14 करोड़ लोग इंडिया में वयस्क कुपोषण का शिकार है, और क्योंकि इनमें हर कुपोषित व्यक्ति में टीबी होने की संभावना 3 से 4 गुना होती है, तो जो टोटल टीबी के हम देख रहे हैं करीब 30 लाख केसेस में 1/3 से लेके आधे तक कुपोषण की वजह से ही हो रहे हैं। तो अगर हम एक सामाजिक पृष्ठभूमि में देखें तो टीबी का रोकथाम, जैसे मैंने कहा कि हमारी इम्यूनिटी उसमें मदद करती है, और कुपोषण एक मेन कारण है जो इम्यूनिटी के कमजोर होने का। तो अगर सामाजिक तरीके से जो भी हम करें, चाहे वो खान पान की व्यवस्था हो, चाहे रोजगार का समस्या हो, अगर पोषण का स्तर बढ़ेगा तो टीबी की समस्या हम आधी तक कम कर सकते हैं। और ये सुनने में थोड़ा लगेगा कि इसका कोई प्रमाण है कि नहीं, इसमें प्रमाण आपको यूरोप के देशों में टीबी कई गुना ज्यादा प्रचलित थी, मगर जैसे जैसे वहां सामाजिक स्तर बढ़ा, खाने पोषण का स्तर बढ़ा, वहां टीबी अपने आप कम होती गई, और 1950 में जब टीबी की ड्रग्स आई तो उसमें काफी व्यापक असर पड़ा। तो ये टीबी की जो समस्या है, एक तरफ से तो जो हमारे समाज में, जैसा आपने बताया, गरीबी के साथ कुपोषण जड़ा हुआ है, कई लोगों के दिमाग में भ्रांतियां भी होती है पोषण के बारे में, वो एक अलग चीज है, और दूसरा नंबर में इंडिया में डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का एक टीबी से जुड़ाव है, स्मोकिंग और अल्कोहल, धूम्रपान और अल्कोहल के सेवन से भी एक रिस्क फैक्टर है। तो हम लोगों ने जो झारखंड में शोध किया उसमें ये था कि अगर हम ये पोषण की समस्या को हम लोग एड्रेस करते हैं, उसको हम जो आमतौर पे पोषण में इंडिया में अनाज जो है वो पीडीएस के थ्रू मिलता है, मगर उसमें दालों का अभी प्रोविजन नहीं है, और स्पेसिफिकली शाकाहारी लोगों में जब तक आप दाल नहीं देते तब तक ये बैलेंस्ड डाइट नहीं बनती है, और उसमें फिर प्रोटीन का इम्यूनिटी से एक रिश्ता है। तो हम लोगों ने 3000 हाउस होल्ड्स में, मतलब 3000 परिवारों में, जो जिनमें टीबी के, लंग टीबी के मरीज थे, फेफड़े की टीबी के मरीज थे, जिनके संक्रमण था, उन्हीं के घर वालों में शोध कार्य किया करीब 3 साल तक, कि जो भी और चीजें उनको मिल रही हैं, चाहे वो BCG का टीका है बच्चों को, चाहे वो गुप्त टीबी का संक्रमण की दवा है, उनमें हम लोगों ने साथ में एडिशनल चावल और एडिशनल दाल और मल्टीविटामिन टैबलेट्स दी, और उनको हमने देखा अगले 2 साल तक कि इन पे क्या असर पड़ता है। तो जिन परिवारों में, दो दो परिवार के तो बनाए गए थे ग्रुप, एक में ये एडिशनल चीज दी गई और एक में जो नॉर्मल उनका खान पान था वो। तो जिनमें हमने ये एडिशनल चावल और दाल और मल्टीविटामिन दिए, उसमें 40 से 50% तक सक्रिय टीबी की दर कम हो गई। तो उसमें हम लोगों ने ये, और ये लास्ट ईयर हम लोगों ने ये एक इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश किया, इसके ऊपर काफी अभी प्रतिक्रिया भी हो रही है। तो पोषण अगर एक हमारे यहाँ एक मुद्दा है जो टीबी को बढ़ा रहा है, अगर हम उसको एक सामाजिक रूप में हम इसको एड्रेस करते हैं, और मैं सब फिर भी कहना चाहूंगा कि टीबी को एक व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, यह हमारी सामाजिक समस्या है, और हम अगर मिलजुल के इसको समझेंगे, इसकी पृष्ठभूमि को, तो हम इसमें बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने देखा कि डायबिटीज के जो मरीज थे, खासतौर पर ग्रामीण एरिया में, उनको उचित पूरा कंट्रोल डायबिटीज का वो नहीं कर पा रहे थे, वो भी एक मृत्यु का कारण बन रहा था मरीजों में। तो कुछ चीजें हम लोगों ने, जो पेशेंट्स की मृत्यु हुई उसमें से हम लोग शोध कार्य में से कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे सामने आए, वो ये था कि अगर हम टीबी की जो मॉलिकुलर टेस्ट है, जो बलगम की जांच है, उसको करते हैं, बट साथ साथ अगर हम एक पूरे पेशेंट की जांच अगर ठीक तरीके से होती है कि क्या ये चलने फिरने में सक्षम है, क्या इसको सांस की तकलीफ तो नहीं है, इसका बीपी कम तो नहीं है, इसके खून की कमी तो नहीं है, ये जांचें भी हमने अपने मरीजों में करी थी, और जब उनको हम लोगों ने पाया कि बहुत कमजोर है वजन के हिसाब से या इसको खून की कमी है, जब इस तरह का हम लोगों ने एक उसको रेफरल करने की कोशिश की, तो इससे मृत्यु दर भी हमारे जो पेशेंट्स थे उसमें 35% कम हुई, जो और प्रोग्राम में पेशेंट्स है उसके हिसाब से। दोनों चीजों का मैं कहना चाहूंगा, रोकथाम के लिए अगर हम रोकथाम करने की कोशिश करें टीबी की, तो क्या चीजें हैं जो हमारे समाज में इम्यूनिटी को कम कर रही हैं, चाहे वो कुपोषण हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कुछ पेशेंट्स में एचआईवी की समस्या हो, क्या हम उसको सुधार सकते हैं, और अगर टीबी के मरीज की मृत्यु हो रही है तो क्या हम स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से जरा देख सकते हैं कि क्या जो पेशेंट है उसको पहले 2 महीने में खासतौर पे बहुत उनको खतरा रहता है मृत्यु का, तो क्या हम बेहतर उनका थोड़ा सा देखभाल कर सकते हैं, क्या हर पेशेंट जो अति कुपोषित है, हमारे यहाँ जो पेशेंट्स थे उनका वजन बहुत कम था, औसत वजन करीब 38 किलो महिलाओं में और 42 पुरुषों में था, तो वो काफी कमजोर थे, तो उनको हमको अगर दोबारा काम करने के लिए सक्षम बनाना है तो भी उनका वजन बढ़ाना होगा, तो जो खाने का हम लोगों ने पेशेंट्स में दिया था 10 किलो का फूड बास्केट, वो क्या हम पूरे सारे मरीजों को इंडिया में दे सकते हैं, जैसे डॉक्टर सौम्य ने कहा कि 500 रुपये उनको आर्थिक सहायता मिल रही है, मगर अगर ये सहायता भी मिल जाए, जिसके लिए आजकल एक प्रोग्राम चला है बट वो यूनिवर्सल अभी भी नहीं हुआ है, जो लोग सामने आते हैं मदद करने के लिए वो है, तो अगर इस तरह की बेहतर थोड़ी सी जो दवाएं हैं उसके साथ साथ ये सामाजिक सपोर्ट और न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल जाए, तो मुझे लगता है कि हम अपने जो अभी उसमें काफी हद तक हम सुधार ला पाएंगे, और खासतौर पे उनके लिए जिनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है।
1: जी जी, अब हम डॉक्टर रजत गोयल से बात करते हैं। डॉक्टर रजत, टीबी के फैल को रोकने के लिए टीबी का टीका यानी वैक्सीन बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्या ऐसा वैक्सीन है जो टीबी से बचा सकता है, और अगर नहीं है तो उसके आविष्कार में हम कहाँ तक पहुंचे हैं?
5: आरती जी नमस्कार, पहले आपको और आपके श्रोताओं को, एटलीस्ट आज हम वैक्सीन की बात करते हैं, ये एक वर्ड हो गया है जिसकी डिमांड आने लगी है, और मैं ये कह सकता हूँ कि 100 सालों के बाद टीबी की बीमारी के बारे में आपने सब विशेषज्ञों से सुना, इतने सालों के बाद शायद मैं एक वर्ड कह सकता हूँ जो हम बहुत सुनते हैं आजकल रेडियो पे, कि शायद हमारे लिए वैक्सीन के अच्छे दिन आ रहे हैं। लेकिन जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो सिर्फ वैक्सीन बनाना जरूरी नहीं है, वैक्सीन मिलना जरूरी है, कम दाम पे मिलना जरूरी है, और उस वैक्सीन को लेना भी जरूरी है। तो जो जब आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो जब भी हमको ये सारी चीज़ों के ऊपर नज़रअंदाज करना चाहिए। आप हम लोग सारी दुनिया और हिंदुस्तान में ये COVID-19 की महामारी हुई, आप हम सब उससे जानकार हैं, और उसमें जैसे टीबी के बारे में आज आपने सुना, ये एक ऐसी बीमारी है ये सब एज ग्रुप में होती है, ये किसी को नहीं छोड़ती, और इसलिए कोई भी वैक्सीन अगर बने तो वो सारी एज ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। दूसरा, आपने वही बीमारी में देखा, कोविड में देखा, कि कभी भी अगर टीका बने तो वो सारी जो भारत सरकार की सेवाएं हैं उसमें उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वो प्रारंभिक हो, मध्यवर्ती हो या उच्च स्तर पे जो सेवाएं मिलती हैं। तो फॉर्चुनेटली हमारा जो अभी प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का, भारत सरकार का जो आयुष्मान भारत है, वो इसके ऊपर अब बढ़ोतरी कर रहा है। अब हमारी जो वैक्सीन हैं वो सारे उम्र के लोगों के लिए दी जाती हैं, और कैसे कैसे सारी जहां जहां पे सेवाएं प्रदान होती हैं वहां पर वो वैक्सीन मिले, तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी स्पेशली टीबी को लेकर होता है, और वैसे कोई भी नई बीमारी को लेकर होता है, कि जब भी अगर वैक्सीन बने, जो वैक्सीन बनाने वाला होता है उसको ये भी जरूरी होता है, और जो वैक्सीन देता है जैसे सरकार देती है प्रोग्राम के लिए, तो क्या वो सस्ती बन रही है, उसकी डिमांड कितनी है, कौन लेगा, उसको कैसे देंगे और किसको सबसे ज्यादा उसका बेनिफिट होगा। जैसे आपने कोविड में देखा और आज आपने विशेषज्ञों को भी सुना कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो जब हम वैक्सीन बनाए भी तो टीबी के पेशेंट को, खासकर उनको जिनको और बीमारियां हो, चाहे वो पोषण कम पोषण की बात हो या डायबिटीज की बात हो, तो उनको भी देना और उनको पहले देना जरूरी होता है। और ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं सोचने के लिए, ताकि जब भी भारत सरकार कोई भी प्रोग्राम रोल आउट करे तो वैक्सीन पहले उनको मिले जिससे उनको सबसे ज्यादा फायदा हो। और इसके ऊपर भी सरकार बहुत सारा काम कर रही है। अब आते हैं वैक्सीन पर से, जो आपका प्राइमरी सवाल था कि टीका बन रहा है कि नहीं बन। तो हम सब जानते हैं कि हम बच्चे जब पैदा होते हैं तो एक BCG की वैक्सीन दी जाती है। तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए हैं दुनिया भर में जिसमें दिखाया गया है कि शायद स्पेशली वो लोग जिनको बीमारियों का बहुत हाई रिस्क हो, या जिनको बाकी बीमारियां हो और उससे टीबी से बहुत ज्यादा पीड़ित हो, तो भारत सरकार ने एक नया प्रोग्राम निकाला है जिसको हम BCG रीवैक्सीनेशन प्रोग्राम
1: जी
5: बना रहे हैं और वो सबको दी जा रही है। लेकिन इसके अलावा मैं इतना खुश हूँ कि आज की तारीख में 3 या 4 ऐसी वैक्सीन के ऊपर काम किया जा रहा है जिससे शायद हमें अब इतने सालों के बाद एक होप है कि टीबी की वैक्सीन बन सकती है, पर आने वाले 3 या 4 सालों में हमारे लिए इसका बहुत शायद हम देखें कि बन जाए और ये इंट्रोड्यूस हो जाए हमारे प्रोग्राम में। और हमने ये भी देखा, जैसे कोविड में देखा, कि आत्मनिर्भर भारत में हमारे लिए, खुद हमारे देश में अगर वैक्सीन बने और वो हमारे जो पॉपुलेशन है उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस करे, तो उसके लिए हमको ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ता है। तो 3 ऐसी कंपनियां हैं भारत में जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। एक इम्यूनोवैक एक वैक्सीन है, एक BPM करके एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, और एक MTBVAC है जो एक एक नई वैक्सीन है जिसके ऊपर बहुत काम किया जा रहा है और बहुत लेट स्टेज में है। हमारी जो संस्था है वो ग्लोबली इसके ऊपर काम कर रही है, जो काफी सारे विशेषज्ञ आज जो हैं, जो आपके प्रोग्राम में भी हैं, वो भी इसके सपोर्टिव हैं। तो अगर ये जो जांच चल रही है और जिस जितनी सफलता अभी तक दुनिया भर में मिली है, जब जो हिंदुस्तान में जो जांच चल रही है उसके ऊपर वही रिजल्ट आए जो हमें बाकी जगह मिल रहे हैं, तो वी आर वेरी होपफुल कि बहुत जल्दी एक टीबी की वैक्सीन हम सबको मिलेगी, हम सारी उम्र के लोगों को मिलेगी, हम सबको बहुत फर्क पड़ेगा। और जो हमारा एक विजन है टीबी मुक्त भारत, और या WHO का जो प्रोग्राम है टू एंड टीबी कैंपेन, वो बहुत जल्दी सफल होगा।
1: शुक्रिया डॉक्टर गोयल। इस उम्मीद पे हम सभी कायम हैं, पर शायद बचाव अभी अभी भी बहुत जरूरी है।

तो मेरे पेट में टीवी था क्योंकि मेरे पेट में पेन होना शुरू हुआ था, तो मैंने घर वालों को बताया था कि मेरे पेट में ना बहुत पेन हो रहे हैं। तो मेरे घर वाले बोल रहे हैं अक्सर होता है खाली पेट में होने से होता होगा, स्कूल टाइम पे जब मैं था तो कह रहे कि तुमने खाना पीना नहीं खाया होगा टाइम पे इसलिए पेट में दर्द हो रहा होगा। फिर मैंने मम्मी को बोला कि नहीं ये 1 महीने की बात नहीं है, ये मुझे काफ़ी टाइम से मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा और एक ही जगह मेरे को पेन हो रहा था, खांसी होने लगा था बहुत ज़्यादा, और जब मेरी खांसी होती थी ब्लडिंग आना शुरू हो गया था। तो मैंने घर वालों को भी बताया था, मम्मी कह रही है कि नॉर्मल है खांसी होता है तो शायद ज़्यादा खांसने शायद ब्लडिंग आ जाता होगा कभी कभी, तो थोड़ा धीरे खांसना। फिर डॉक्टर से दवाई ले लेते थे हम, पेन वेन थोड़ा ठीक हो जाता था। धीरे धीरे मेरे बॉडी क्या हो गया, सूखने लग गया, पतला सा होने लग गया मेरे बॉडी। फिर मैं अचानक से बीमार पड़ गया था और काफ़ी फीवर्स होने लगे थे, मेरे फीवर उतर ही नहीं रहे थे, 5-6 दिन कंटिन्यू का फीवर था। मेरा ब्लड टेस्ट करा ले सब नॉर्मल था, और मैंने एक्सरा कराया था उसमें भी नॉर्मल था, अल्ट्रासाउंड भी कराया उसमें भी कुछ नहीं था। फिर किसी ने सजेशन किया, एक भैया थे उन्होंने बोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे होते हैं, एक बार आप गवर्नमेंट पे जाके देखो, वहाँ पे एक बार इलाज करा के देखो क्या बोलते हैं वहाँ पर। फिर मैं जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, मैंने डॉक्टर से मिला, तो उन्होंने मुझे पहले 1 दिन की दवाई दी कि 1-2 दिन के पहले दवाई दिया, क्या ये दवाई खा के देखो इससे आराम होता है तो ठीक, नहीं होता तो आप दोबारा आना हमारे पास। तो जब मैंने दवाई लिया तो मेरा फीवर नहीं उतरा था, फिर मैं दोबारा से हॉस्पिटल गया, फिर उन्होंने मुझे सीटी स्कैन लिखने के दिया कि आप करवा लो एक बार, क्योंकि मैंने अल्ट्रासाउंड और जो एक्सरे कराया था उन्होंने देखा उसमें कुछ था नहीं, उसके बाद हम क्या डिसीजन लेते हैं उसके बाद पता चलता है क्या है आपको। फिर सब सीटी स्कैन करा के लेके आया मैं, तो फिर जब मैं ऑप्सी डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर टीवी का लक्षण लिखा हुआ था और साथ में स्टोन भी था दोनों साइड में, छोटे छोटे थे, पर डॉक्टर बोल रहे कि आपको टीवी है। तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था डॉक्टर के पास ही, और बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था मैं अपने आप को। तो फिर डॉक्टर मुझसे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या आपको घर में किसी को टीवी हुआ है, या पहली बार आपको टीवी हुआ है, या कभी हुआ हो आपको, या घर में किसी को हुआ कि इसके थ्रू आपको फैला हो। तो मैंने कहा नहीं घर में किसी को नहीं है। नर्वस मैं डर गया था क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ये लक्षण हो सकता है, क्योंकि मैं खाना ठीक ठाक खा ही लेता था मैं, हाँ आई नो मैं चटपटा बहुत ज़्यादा खाता था जो था। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि टीवी की नॉर्मल है, हो जाता है किसी को भी, पता नहीं चलता, कभी भी किसी को भी हो जाता है, तो इसमें इतनी डरने वाली बात नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप सामने डिपार्टमेंट है वहाँ पर, आप टीवी के डिपार्टमेंट जाके वहाँ पे एक बार अपना दिखा दो रिपोर्ट ही सारे। फिर मैंने वो उनको दिखाया तो कह रहा है नहीं इसमें डरो मत, जितना आप डरोगे उतना आपको ही हानि होगा, क्योंकि आप उतने ही और बीमार होते जाओगे, तो आप सोचो मत कि आपको टीवी है, बस जैसे जैसे हम स्टेप बताते हैं आपको इलाज का आप वैसे वैसे करते जाओ। सब कुछ करता था, खेलना कूदना घूमना सब कुछ करता था, पर ये कैसे हो सकता है, मुझे मेरे माइंड में यही चल रहा था बार बार कि सब तो ठीक है, काम भी अच्छा कर रहा हूँ मैं, स्कूल भी टाइम पे जा रहा हूँ, भारी चीज़ें भी आराम से उठा ले रहा हूँ, तो मुझे ये कैसे हो सकता है। तो फिर डॉक्टर ने जब मुझे बोला कि पेन होगा क्योंकि पेट में है आपका टीवी तो पेन होगा, तो अब डरो मत, तो मैं डरा नहीं, उन्होंने जो जो स्टेप बताया मैंने बस उसको फॉलो किया। जैसे जैसे उन्होंने बोला कि ये इलाज करना है आपको इस टाइम पे, या ब्लड टेस्ट करवाना है, या बलगम टेस्ट कराना है, हर टेस्ट का मैंने समय समय पर किया। जब उन्होंने सारा टेस्ट करने के बाद मुझे सजेशन किया कि जहाँ आप रहते हो उस एरिया में भी एक डिस्पेंसरी होता है, तो उस डिस्पेंसरी में आप ये पर्चा दिखाना और दवाई शुरू हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि दवाई आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, आप एरिया में हो उस डिस्पेंसरी से आपको दवाई मिलेगा। तो मैं गया अपने वहाँ पे, वहाँ पे प्रोसेस था, तुरंत ही दवाई नहीं दिया उन्होंने, पहले उन्होंने नाम नोट किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिया, 2-3 दिन बाद उन्होंने, एक महिला थी वहाँ पर उनको रिस्पॉन्स दिया गया था मेरा 6 महीने की दवाई का, तो हर महीने मेरी दवाई ख़त्म हो गया तो मुझे उनसे लेना था। तो एक ग्रीन कलर का दवाई का पैकेट था, पूरा डोज जो था वो बहुत हैवी था, टाइम के अकॉर्डिंग लेना था दवाई को, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी किसी भी टाइम ले लो, नहीं, क्योंकि एक जो पत्ता था ग्रीन कलर का उसको आप एक पत्ते में से 3 गोली आपको एक टाइम पे लेना, आपको टाइम फिक्स करना है। मैंने लिया था दोपहर का टाइम क्योंकि उस टाइम मैं कॉलेज से आ जाता था मैं, तो मेरा कंटिन्यू फिर मेरा दवाई चला, फिर कंटिन्यू मेरा 6 महीने दवाई चला, उसके बाद फिर मैं ठीक हो गया। तो उन्होंने फिर ठीक होने के बाद मुझे बुलाया था, जब 6 महीने मेरे खत्म होने के बाद मैं लास्ट टाइम उनके पास गया, फिर उन्होंने एक और एक्सरे करने के लिए बोला लास्ट टेस्ट के लिए, तो मैंने वो एक्सरे कराया, तो उन्होंने वो रिपोर्ट को चेक वेक किया, कह रहा नॉर्मल है,

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भारत सोपोरी, लेके आया हूं आपके लिए आज एक और कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है भिखारी का दान, जिसको लिखा है सीहोर मध्य प्रदेश से धर्मराज देशराजी ने। वर्मा जी सुबह सुबह घूमने के लिए अपने बंगले के बाहर निकले ही थे कि उनके दरवाजे के पास आकर एक लंगड़ा भिखारी गाने लगा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। फिर उस लंगड़े भिखारी ने जोर से आवाज लगाई, सोने वालों जागो, घूमने जाओ, पढ़ाई करो, समय नष्ट मत करो, उठो जागो, समय बहुत कीमती है। ये सुनकर वर्मा जी ने उससे 10 का नोट दिया और पूछा, बाबा इस कॉलोनी में पहली बार आए हो, कहां के रहने वाले हो। तब भिखारी बोला, सर जी इसी शहर का निवासी हूं, बस रोज कॉलोनी बदल बदल कर सुबह जल्द उठने का संदेश देता हूं। लोग भिखारी समझकर रुपया पैसा दे देते हैं तो लेकर रख लेता हूं और धर्म कार्य में लगा देता हूं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया और वर्मा जी घूमने के लिए निकल गए। 2-3 दिन बाद सुबह सुबह जब वर्मा जी घूमने के लिए निकल ही रहे थे, उनकी ससुराल से कॉल आ गया। जब बातचीत खत्म हुई तब वो अपनी पत्नी से बोले, मैडम आपकी माताजी का संदेश था, आपके पिताजी अचानक बहुत बीमार हो गए हैं, हमें इसी समय बुलाया है। ये सुनते ही उनकी पत्नी उठ खड़ी हुई। वर्मा जी ने अपना स्कूटर निकाला और 15-20 मिनट में ही वहां पहुंच गए। वर्मा जी ने अपनी ससुराल के दरवाजे पर पहुंचकर देखा, वही लंगड़ा भिखारी उस कॉलोनी में लोगों को जगा रहा है, जोर जोर से गीत गाकर जगाने की प्रेरणा दे रहा है। फिर वर्मा जी ने अपने ससुर का हाल जाना, तत्काल किसी नजदीकी नर्सिंग होम ले चलने का तय हुआ। 2-3 दिन बाद वर्मा जी दिल लगाकर प्राइवेट नर्सिंग होम में अपने ससुर की देखरेख में लगे रहे। एक दिन नर्सिंग होम के दरवाजे पर किसी महिला के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। वर्मा जी ने जाकर वहां तमाशाई एक व्यक्ति से पूछा, भाई क्या बात है। तब उसने कहा, इस महिला का कोई नजदीकी यहां मर गया है, लेकिन उसके मृत शरीर को नर्सिंग होम वाले दे नहीं रहे हैं, कहते हैं पहले यहाँ का बकाया रुपया जमा करो। तब वर्मा जी ने अपना रुमाल उस महिला के पास बिछा दिया और उस पर कुछ रुपए रख दिए। उनका अनुसरण करते हुए 2-3 लोगों ने भी रुपया वहां रख दिए। तभी वहां एक सूट बूट पहने एक व्यक्ति ने आकर आवाज लगाई, यहाँ का इंचार्ज कौन है, कितने रुपए बाकी हैं इन पर, जरा भी इंसानियत नहीं है। तब एक व्यक्ति ने आकर कहा, साहब जी कैश का इंचार्ज मैं हूँ, छोटा सा कर्मचारी हूँ यहाँ का, मुझे भी हिसाब देना होता है, इन पर पूरे 5,000 रुपए बाकी है। तब आए हुए व्यक्ति ने अपनी जेब से निकालकर 5,000 रुपए दिए और कहा, ये लो तुम्हारे रुपए और सुनो ऐसे किसी भी मजबूर को परेशान मत करना, जब भी ऐसी स्थिति आए मुझे बुलाकर रुपया ले लिया करो। फिर उस रोने वाली महिला के कुछ रुपये देकर वो जैसे ही आगे बढ़ा, वर्मा जी हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाकर कहा, भाई आपको मैंने कहीं देखा है, क्या मुझे जानते हो। तब वो व्यक्ति बोला, जी मैं वही भिखारी हूँ जो रोज गली गली घूमकर जल्दी जागने और समय के सदउपयोग का संदेश देता हूँ। ये सुनकर वर्मा जी चौंक पड़े और बोले, लेकिन वो भिखारी तो लंगड़ा था। तब उस व्यक्ति ने अपने पैर में लगे नकली पैर को दिखाकर कहा, सर जी मुझे शुगर की बीमारी हो गई थी जिसकी मैंने उचित देखभाल नहीं की, अपनी लापरवाही के कारण मुझे अपने पैर के कुछ हिस्से को निकलवाना पड़ा, सर जी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अतः मैंने अपने जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए रोज सुबह मांगता हूँ
अपनी जरूरत पूरी होने के बाद जो बचता है उसे धर्म के काम में लगा देता हूँ। अपने देश में बहुत से धनवान ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए फालतू पड़े हैं, लेकिन किसी गरीब की मदद करने को पाप समझते हैं। ये सुनकर वर्मा जी बोले, भाई आपके विचार जानकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और आपको नमन करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि आपके पास जितनी भी क्षमता है जरूरतमंद की मदद जरूर करें, जितना भी आप कर सकते हैं। और इसी सुविचार के साथ मैं आप सभी से लेता हूं विदा। किसी और कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट्स

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

नमस्कार, 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो विविधता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो और लघु कथाओं की श्रृंखला में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई लघु कथा जिसका शीर्षक है जीने की राह। और इस लघु कथा के रचनाकार हैं ललित अकिंचन। आइए सुनते हैं ये लघु कथा। संत एकनाथ के पास एक आदमी गया और पूछा, दुनिया में किस तरह से रहना चाहिए? संत ने कहा, जरा सामने आ, पहले तेरा माथा तो देखूं कि तेरा जीवन बाकी भी है या नहीं। वो आदमी सामने आया और माथा दिखाया। संत ने कहा, तेरी तो 7 दिनों में मौत है, अब तू कहे तो बताऊं। आदमी बोला, फिर रहने दो। भागता हुआ चला गया। सबसे पहले उसने उन लोगों से माफी मांगी जिनको उसने भला बुरा कहा था, फिर जिन लोगों से झगड़ा किया था, बेईमानी करी थी, उनसे भी जाकर माफी मांगी। तब घर जाकर बच्चों को उनका हक दिया, पत्नी को पत्नी का हक दिया। पत्नी से बोला, मेरी यात्रा का मोड़ मुड़ रहा है, मैं भगवान का सहारा ले रहा हूं, हो सके तो तू भी भगवान का सहारा ले ले। इस तरह से 6 दिन बीत गए। 7वें दिन वो भगवान के ध्यान में बैठा, मन बड़ा हल्का था। फिर से ध्यान आया कि एक बार संत से चलकर पूछ लें कि कैसे जीना है, अगले जन्म में फिर वैसे ही जी लेंगे। गया संत के पास, पूछा, महाराज किस तरह से दुनिया में जीना चाहिए? संत ने कहा, पहले ये बता कि ये 7 दिन कैसे बीते, कितने लड़ाई झगड़े किए, अरे किस किस से बेईमानी की? वो आदमी बोला, महाराज कोई नए लड़ाई झगड़े तो नहीं किए, बल्कि जो पुराने थे ना वो भी जाकर निपटाया हूं, माफी मांगाया हूं और उन्होंने माफ भी कर दिया है। संत ने पूछा, अच्छा इन 7 दिनों में भगवान को याद किया कि नहीं? वो बोला, महाराज भगवान ही याद रहा, क्योंकि मौत सामने थी। संत ने कहा, तो जा फिर बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही बिता ले। बोला, पर आपने तो हमारा माथा देखा था कि 7वें दिन हमारी मौत हो जाएगी। संत ने कहा, मौत तो 7 दिनों में ही है, सोमवार नहीं तो मंगलवार, ये 7 दिन ही हैं। मैंने तो सिर्फ तुमको समझाने के लिए जरा घुमा फिरा कर समझाया है, वरना आदमी सीधे तरीके से समझता कहाँ है। तो आप भी ये समझ लीजिए कि दोस्तों, जब तक हमारे दिमाग में चीज रहती है कि हमारे पर किसी की नजर है, हमें किसी के पास जाना है, हम चंद दिनों के मेहमान हैं, अपना किरदार निभाने के लिए आए हैं, तब तक हम अपने व्यवहार को ठीक रखते हैं। और जब ये भूल जाते हैं फिर अपने पुराने ढर्रे पर चलाते हैं। कोशिश करें हर वक्त दिमाग में रहे कि ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखा जाए।

0: आप सुन रहे थे रेडियो वितस्ता पर हमारी लघु कथाओं की श्रृंखला में हमारी आज की कहानी, जिसका शीर्षक था जीने की राह। और इस लघु कथा के रचनाकार थे ललित अकिंचन। और दोस्तों, अगर आप भी लघु कथाएं लिखते हैं या आपके पास भी कोई ऐसी लघु कथा है जिसको आप किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपनी लघु कथाएं रेडियो वितस्ता पर हमें भेजिए। हम आपकी लघु कथाओं को आपके नाम के साथ ही प्रसारित करेंगे। हमारे पास लघु कथाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। हमारा दूरभाष नंबर है 7056413010। और अब अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं एक और नई लघु कथा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
1: तो इच्छू भोजान नमत अशैरिया सिफर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हूं।
2: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदेत या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
3: आज का जो ललवाक माता ललेश्वरी शिव योगिनी का मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण ललवाक है। इस ललवाक में ललेश्वरी कहती हैं, मैं पहले कश्मीरी में आपको बताऊंगा, अकुई ओंकार युस्नाय बिदरे, अकुई ओंकार युस्नाय बिदरे, कुंभई ब्रह्मांडस सुंगरे, आक्सुई मंथर सेतस करे, आक्सुई मंथर सेतस करे, तस्सास मंथर क्या करे। लल कहती है जिस ओंकार को किसी ने अपनी नाभि में धारण कर लिया, नाभि मतलब बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे कश्मीर योग दर्शन में। नाभि हमारे सात कुंडलनी चक्रों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, और जब ओंकार की वो ध्वनि और वाइब्रेशन मेरे नाभि में केंद्रित हो जाती है तो ओम ही एक ब्रिज बन जाता है मेरे सेल्फ कॉन्शियसनेस के बीच में और उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के बीच में। हमें उस यूनिवर्सैलिटी का पता लगता है कि मैं अब केवल मैं नहीं हूं, मैं तो इस प्रकृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं, इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं। तो जब मैं भी वही बन जाता हूं तो फिर वो कहती है ता सास मंत्र क्या करे, फिर मुझे रिचुअल्स की कोई आवश्यकता नहीं, पूजा पाठ पद्धति यज्ञ इन सब की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। परंतु ये बड़ा जरूरी है समझना कि एक नर्सरी से लेके पीएचडी वाला मॉडल है, यानी शुरुआत तो आपको कहीं से करनी पड़ेगी। और जब वो शुरुआत करते हैं और करते करते करते आप अपनी नाभि में उस ओम को धारण कर लेते हैं तो फिर आप उसी स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पे आपको इन छोटी मोटी पद्धतियों की आवश्यकता नहीं होती। मैं नीजा जी से कहूंगा कि वो इस ललवाक को अपने सरस्वती के मुखमंडल से हम सब तक पहुंचाए।

पर्वतों के पेड़ों पर शाम के साए हैं, कहीं से मौसम पिघलने की आहट है और खुशबू में सिमटी हैं धड़कने। रात भीगते भीगते गुजर गई तुम्हारे ही तसव्वुर में, रात भीगते भीगते गुजर गई तुम्हारे ही तसव्वुर में, पर मुड़ के नहीं देखा तुमने बीते मौसम की तरह, मुड़ के नहीं देखा तुमने बीते मौसम की तरह।

कोई अब इन रास्तों से गुजरता क्यों नहीं? सफर तवील होने के बावजूद तुम नजरों से ओझल होते गए और दूर इन सहराओं में आंधियां थी, गर्द गुबार के जजीरों के सिवा कुछ नहीं नजर आया। फिर भी उम्मीद बंधी रही, शायद एक परछाई लिपट जाए मुख्तसर सी जिंदगी के साथ, सिर्फ एक बात करके।

क्या तुम आसमानों में रहते हो? इसीलिए शायद मेरी आरज़ूओं से खेलते हो, मेरी मासूमियत पर मुस्कुराते हो। क़यामत तक साथ निभाएंगे और हमारे तुम्हारे इन रिश्तों को मजबूत डोर से बांधेंगे। इन्हीं आसमानों में जा बसेंगे, बनाएंगे अपना आशियाना, पर यह हो न सका। खुद तो निकल गए और हमें यहां छोड़ आए इन तन्हा हवाओं के संग।

आसमानों में जा बसी हो, तितलियों के संग हवाओं में तैरती हो, परिंदों की उड़ान नाप लेते हो, सितारों को छू लेते हो। मोहब्बत बांटते हो और इन तैरते बादलों में गुम हो जाते हो। चुपचाप इशारों ही इशारों में समझाते हो, रूहानियत का फलसफा बयां करते हो और इन फिजाओं को अपने

दुआओं का असर अब रहा नहीं, वरना सजदों में खुदा को तलाशना क्या मुमकिन नहीं होता? सहमे सहमे बुझे बुझे से ये उदास चेहरे इबादत में मसरूफ, इन्हें ही रोशनियों का इंतजार, क्योंकि अब यह अंधेरों से निकल आए एक नए कारवां में शामिल होने के लिए।

बहती धाराओं से गुजर कर इन रास्तों पे तुम मेरा एहसास हो। ख्वाहिशों की परवाज लिए बुलंदियों को छूना एक ख्वाब की तरह दिल में पलता रहा। काश हम तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें कोहसारों के उस पार ले जाते जहां मोहब्बतें रवा दवा है, जहां खुशबू है प्यार की और बदलते हैं मौसम पल भर।

0: पर्वतों के पेड़ों पर शाम के साए हैं, कहीं से मौसम पिघलने की आहट है और खुशबू में सिमटी हैं धड़कने।
1: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

क्या आप जानते हैं रेडियो सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि रेडियो सुनते समय हम कोई भी काम कर सकते हैं, और हमें रेडियो से कई बार ऐसी जानकारी मिलती है जो हमारा जीवन भी बदल सकती है। तो सुनते रहें रेडियो वितस्ता 90.0 FM, हम सफर जिंदगी का, अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो।

कहे रही संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जे कसे, सोई सांची मीत। सुविख्यात कवि रहीम दास द्वारा रचित ये दोहा हम सब ने आज तक सुना भी है और पढ़ा भी है। इस दोहे के माध्यम से कवि हमसे कहता है, जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तब उसके अनेक सगे संबंधी तथा मित्र बनते हैं, उसके समीप आते हैं, पर विपत्ति के समय में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज एक नया कार्यक्रम लेके आया हूं और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दोस्ती की, दोस्तों की, और जिंदगी में हमारे दोस्तों का क्या महत्व है। आज का ये कार्यक्रम मैं अपने सभी दोस्तों को समर्पित कर रहा हूं, जो दोस्त हमारे साथ हैं और जो दोस्त हमारे साथ अब नहीं है। मैं ये कहूंगा कि दोस्ती और दोस्त ये भगवान ने पहले ही निर्धारित किए होते हैं। बिना दोस्तों के और बिना दोस्ती के जिंदगी अधूरी है। दोस्तों पर इतना निर्भर इंसान होता है शायद अपने सगे संबंधियों पर भी नहीं। कुछ दोस्त जिंदगी में छूट जाते हैं, कुछ दोस्त जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। दोस्ती एक पूजा है और पूजा ही दोस्ती है। दोस्ती एक प्रार्थना है। दोस्त एक साथी है और उसका साथ रहना ही दोस्ती कहा जाता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं ए फ्रेंड इन ए नीड इज फ्रेंड इनडीड।

व्यक्ति को प्रत्येक रिश्ता अपने जन्म से ही प्राप्त होता है। अन्य शब्दों में कहें तो ईश्वर पहले से ही बना के देता है, पर दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसका चुनाव व्यक्ति स्वयं करता है। सच्ची मित्रता रंग रूप नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी तथा इसी प्रकार के किसी भी भेदभाव का खंडन करती है। आमतौर पर यह समझा जाता है मित्रता हम उम्र के मध्य होती है, पर यह गलत है। मित्रता किसी भी उम्र और किसी के साथ भी हो सकती है। व्यक्ति के जन्म के बाद से ही वो अपनों के मध्य रहता है, खेलता है, उनसे सीखता है, पर हर बार व्यक्ति हर किसी से साझा नहीं कर सकता। व्यक्ति का सच्चा मित्र ही उसके प्रत्येक राज को जानता है। पुस्तक ज्ञान की कुंजी है, तो एक सच्चा मित्र पूरी पुस्तकालय जैसा है, जो हमें समय समय पर जीवन के कठिनाइयों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्णय में दोस्तों की मुख्य भूमिका होती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति स्वयं जैसा होता है, वो अपने जीवन में दोस्त भी वैसा ही चुनता है, और व्यक्ति से कुछ गलत होता है तो समाज उसके दोस्तों को भी सम्मान रूप से उस गलती का भागीदार समझता है।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर, जहां लोग आपसे बात भी अपने स्वार्थ सिद्ध के मनोकामना से करते हैं। ऐसे में सच्ची मित्रता भी बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। प्राचीन समय से ही लोग अपनी इच्छाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दोस्ती करते थे तथा अपना कार्य हो जाने पर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को दोस्ती का हाथ हमेशा सोच

हिम्मत ही मित्रता हो। सच्ची दोस्ती व्यक्ति को सदैव सही मार्ग दिखाती है। नुक्ताचीनी को मित्रता कहना अनुचित होगा। परिवार के बाद दोस्त व्यक्ति की दूसरी प्राथमिकता होती है, जिसके साथ वो हर अच्छे बुरे पलों को व्यतीत करता है। सुविख्यात कवि रहीमदास द्वारा एक चर्चित दोहा में कहा गया, टूटे सुजन मनाए जो टूटे सो बार, रहमन फिर पाए टूटे मुक्तहा। मतलब, सच्चे मित्र जितनी बार आपसे रूठे उन्हें मना लेना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे मोतियों की माला के टूट के बिखर जाने पर हम उन्हें बार बार पिरोते हैं क्योंकि वो मूल्यवान है। ठीक उसी प्रकार सच्चे मित्र भी मूल्यवान होते हैं और उन्हें नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मित्रता का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन में भी है। मेरे मित्रों का समूह मेरे लिए दूसरे परिवार जैसा है। जीवन में व्यक्ति जिन आदतों को वाहन करता है वो मित्रता की ही देन होती है। व्यक्ति के घर से निकलने पर पहली आवश्यकता मित्र होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति मित्र बनाने की होड़ में लग जाता है, क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है तथा वो अकेले नहीं रह सकता। पर यह कितनी गंभीर बात है, हम अपने लिए कोई जानवर भी लाते हैं तो उनके तहकीकात करके लाते हैं, पर हम मित्र बनाने में इतना समय नहीं लगाते, जबकि मित्रता व्यक्ति का पतन भी कर सकता है और व्यक्ति को कामयाबी के उच्च शिखर तक भी पहुंचा सकता है। ज्यादातर हम व्यक्ति को अपना मित्र बनाने से पहले उसके हाव भाव तथा उसका हंसमुख चेहरा ही देखते हैं, जो संकट में हमारे काम नहीं आता। यहां पर मेरा एक व्यक्तिगत कहना है कि अगर आपसे दोस्त रूठ जाए या आप उनसे रूठ जाए तो जितना जल्दी हो सके आप उनको मना लें, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, वो इतना दूर चला जाए कि आप उनसे कोई संवाद ही ना कर सके। इसलिए कहा गया है, तेरे जैसा यार कहां।

आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तान, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर। जीवन में लोगों के अनेक दोस्त बनते हैं, बचपन के दोस्त, स्कूल कॉलेज के दोस्त, व्यावसायिक दोस्त, मतलब टाइम पास के दोस्त आदि। इनमें से कुछ वक्त गुजारने के साथ पीछे छूट जाते हैं और कुछ जीवन भर आपके हर अच्छे बुरे परिस्थितियों में आपके साथ रहते हैं। अपनी परेशानी की बात अपने दोस्तों को बताने से निश्चय ही मन का भार कम होता है तथा मित्रता व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। मित्रता जीवन को रोमांच से भर देता है। मित्र के होने पर व्यक्ति खुद को अकेला महसूस नहीं करता तथा सच्चा मित्र बिना विचार किए ही आपके संकट में देख मदद के लिए आगे आता है। वरन लोग तो बहुत हैं जो कहते नहीं थकते हम आपके मित्र हैं। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कृष्ण द्वारकाधीश बने तथा सुदामा एक गरीब ब्राह्मण ही रहे। फिर भी विपत्ति पड़ने पर कृष्ण ने दोस्ती का फर्ज निभाया और सुदामा के सारे दुख दूर कर दिए। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं, शायद वो लोग दोस्त कहलाते हैं। दोस्ती प्यार का दूसरा रूप है। दोस्ती एक भाव है। हम सभी के जीवन में एक दो या इससे भी अधिक दोस्त होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई दोस्त ना हो। आपस में व्यवहार मिलने पर बहुत कम समय में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर यह भी महत्व नहीं रखता कि हम उस व्यक्ति से कभी मिले हैं या नहीं। व्यक्ति समस्या अपने परिवार के साथ भी बांट नहीं पाता है। वो मित्रता में दोस्तों को बड़े आराम से बता देता है, जिसके साथ हम जीवन के उत्साह, हर्ष, उल्लास, खुशी तथा शोक के बिना किसी तोड़ मरोड़ के साथ बांट सकते हैं। वही व्यक्ति का सच्चा मित्र है। मित्र हमें हर बुरे कार्यों से बचाता है तथा जीवन के हर कठिनाई में हमारे साथ रहता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416013010 पर दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। आप सब अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 7। आज के आमंत्रित मेहमान है कवित्री श्रीमती इंदु शर्मा। कार्यक्रम रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। एडिट, प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन भारत सोपोरी।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। हाजिर हूं आज काव्य गोष्ठी का ताजा अंक लेके, जहां आज के आमंत्रित मेहमान से हम कविता पाठ तो सुनेंगे ही, साथ ही इनके जीवन के बारे में भी जानेंगे और सुनाएंगे इनके मनपसंद गीत भी। नारी सदा ही सम्मानीय रही है। संस्कृत के एक श्लोक का अर्थ है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता ने आमंत्रण दिया है एक सशक्त नारी को, जो एक शिक्षा विद्वान भी है और साथ में कवित्री भी है, जिनका स्वागत मैं करना चाहूंगा इन पंक्तियों के साथ। स्वागत है तुम्हारा शब्दों की रानी, कविता की तुम हो मधुरिम कहानी, भावों के सागर की लहरें हो तुम, हर दिल की पीड़ा का मरहम हो तुम। आज एफएम 90.0 रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में आमंत्रित है श्रीमती इंदु शर्मा जी। स्वागत, अभिनंदन आपका आज के काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में।
1: बहुत धन्यवाद भरत जी। एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता अंबाला के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दे इंदु जी, ताकि आपको वो अच्छे से जान सके, साथ ही ये बताएं आपके लिए कविता क्या मायने रखती है।
1: मैं इंदु शर्मा, बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हूँ और आफ्टर मैरिज मैं यमुनानगर में रहती हूँ। पेशेवर मैं एक अध्यापिका हूँ और जैसे कि आपने पूछा कि कविता के मेरे लिए क्या मायने हैं, तो कविता मेरे प्राण है, मेरा जीवन है, मेरा सब कुछ है। कविता नहीं तो मैं नहीं। कविता, आपने पूछा कि कविता जब आप सोचती हैं या कविता लिखने का सोचती हैं, तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि कोई भी कवि कविता को नहीं चुनता, कविता हमें कवियों को स्वयं चुनती है
0: जी।
1: तो ये ब्लेसिंग्स हैं जो ऑलरेडी आती हैं, हम खुद कहीं से भी उनको उपजाते नहीं है, वो हमारे पास ऑलरेडी आती हैं। और हाँ, उनमें हम ये अपनी भूमिका निभाते हैं कि हम उन लफ्जों को, उनको पिरोते हैं एक माला में, एक मोती की तरह उनको बांध देते हैं। ये ब्लेसिंग्स हैं जो आती हैं और आगे मैं उनको पिरो देती हूँ।
0: इंदु जी, आप एक शिक्षिका हैं
1: जी,
0: एक कविता सुनाइए जिसमें हम समझ पाए कि एक शिक्षिका कैसे उन बच्चों के कोमल मन को समझती है।
1: जी जरूर, मेरी एक स्वरचित कविता का भाव देखिए कि बच्चों को विदा करना कितना मुश्किल है। एक अध्यापिका होने के नाते हर साल बच्चों का एक नया, बच्चों को, नए बच्चों को पढ़ाना, उनको सिखाना, साल भर सिखाना, और जब एक रिजल्ट डे होता है तब बच्चों को विदा करना, तो उस समय जो मेरी मन के भाव होते हैं बीइंग अ मदर टीचर, तो वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। सुनिएगा। अपनी झोली के महकते फूल किसी और को देना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हर साल हर बार ये फर्ज निभाती हूँ। हाँ, मैं शिक्षिका ही नहीं, मालिन भी कहलाती हूँ। रंग बिरंगे प्यारे, कुछ बातुनी और कुछ न्यारे, झगड़ालू कुछ सौम्य से अद्भुत जिद्दी प्यारे, मेरी बगिया के सुंदर फूल महके बैर घृणा सब भूल, जिन्हें सहेजा अति प्रेम से वही हो रहे मुझसे आज दूर, कैसे भूल पाऊंगी, कैसे भूल पाऊंगी। कितना मुश्किल है ना, कितना मुश्किल है, पर फिर भी अपना फर्ज निभाऊंगी। खुशी खुशी कर विदा उन्हें मैं नई पौध लगाऊंगी, संस्कारों के जल से सींच कर नए फूल खिलाऊंगी। हाँ हाँ, बेशक है मुश्किल, पर फिर भी मैं ये फर्ज निभाऊंगी, मैं ये फर्ज निभाऊंगी, तभी तो शिक्षिका ही नहीं मालिन भी कहलाऊंगी।
0: क्या बात, यानी कि आपने बच्चों का जो कोमल मन है उसको आप समझने की कोशिश करती हैं हर दम, हर समय, ताकि आप उनको जो घर से परवरिश मिलती है
1: जी,
0: उस परवरिश में आप अपनी ओर से उनके सोच समझ में बढ़ोतरी करती हैं।
1: जी जी।
0: इंदु जी, आपसे जानना चाहेंगे कविता लेखन और इस ऐतिहासिक जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई?
1: देखिए, बात उन दिनों की है जब मैं 5th या 6th में पढ़ती थी, तो हिंदी में मैंने कविताएं पढ़ी बहुत से लेखकों की, और एक थी कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के
0: जी।
1: इसके अलावा भी महादेवी वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, निराला जी, कबीर दास जी, रहीम जी, उनके दोहे, इतनी सारी चीजें, मतलब उस छोटी सी उम्र में भी मुझे लगता था कि ये लोग कितने महान होते हैं कि इतना ऐसा कुछ लिखते हैं कि जो आज हम बीइंग अ स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं, तो एक उनके लिए एक अलग लेवल का ही सम्मान था और एक चाह भी थी कहीं ना कहीं कि क्या कभी कि ऐसी बुक मेरी भी कभी कभी कविताएं शायद कोई छोटा सा एक सवाल मन के किसी कोने में था, तो वही आज पनपा है और आज एक फूल बन के एक काव्य संग्रह के रूप में मेरे हाथ में है, जो अभी 2023 में ही प्रकाशित हुआ है। बुलाता है आसमान करके नाम है मेरे काव्य संग्रह का।
0: इंदु जी, मैं ये मानता हूँ कि जब हमने अपनी जिंदगी में कोई भी लक्ष्य रखा है
1: जी,
0: उसका सपना देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सपने देखते हैं वही पूरे होते हैं
1: जी।
0: तो इस हिसाब से जब पहली बार आपका कविता संग्रह है प्रकाशित हुआ
1: जी,
0: तो क्या भावना थी उस समय?
1: उस समय बस ये लग रहा था कि आजकल पांव जमी पर नहीं लगते मेरे।
0: हम इस बात पर भी आएंगे, बट उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कवि या कवित्री का दिल गहरा, कोमल और संजीदा होता है
1: जी,
0: क्या संगीत को भी उसी सहजता से लेते हैं आप?
1: यस एग्जैक्टली, संगीत तो मेरी प्राण है, जैसे मैंने आपको बताया कि कविता है तो इंदु है, तो संगीत भी ऐसा ही है। मेरा दिन की शुरुआत संगीत से और मेरे दिन का अंत नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब मैं निद्रा में होती हूँ तब भी कहीं ना कहीं मेरे अवचेतन मन में वो संगीत, कुछ कविताएं, कुछ लफ्ज, कुछ कहानियां, कुछ दोहे, वो चलते रहते हैं।
0: आपने तो संगीत और कविता लेखन को आपस में जोड़ दिया
1: जी,
0: तो हम चाहेंगे कि आपका कौन सा ऐसा मनपसंद गीत है जो हम आपको और हमारे श्रोताओं को सुनाएं?
1: जी हाँ, वो गीत है मेरा, आजकल पांव जमीन पर नहीं लगते मेरे।
0: क्या बात है, आपने मेरे कहने से पहले ही आपने हमारे श्रोताओं के लिए इसको गुनगुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इंदु जी का ये मनपसंद गीत।

0: इंदु जी, आपके जीवन में इंस्पिरेशन कौन रहा है और क्यों?
1: मेरे जीवन में इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद जी,
0: जी,
1: क्योंकि उनके जीवन से जुड़ी उनकी शिक्षाएं और उनकी जो भी स्लोगन्स जो हम लोग पढ़ते हैं, उनकी जीवनी या उनके जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, मैंने उनको बहुत पढ़ा है
0: जी।
1: और पढ़ा ही नहीं है, मैं उनको अपने जीवन में उतारा भी है और मैं मानती भी हूँ। उनकी एक कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। तो मैं उसको, मतलब मैं उसको फॉलो करती हूँ और कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स भी हैं
0: जी।
1: क्योंकि उनका जीवन देखिए बहुत ही सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उन्होंने सोसाइटी के लिए इतना कुछ किया कि आज भी हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ फेस्टिवल करते हैं और उनका जन्म दिवस खूब धूमधाम से मनाया जाता है पूरे हमारे इंडिया में
0: जी।
1: तो उनसे मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ। और देखिए कोइंसिडेंस देखिए कि जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की या मैंने अपना JBT बीएड हायर एजुकेशन जो भी मैंने कंप्लीट किया, हर बार मुझे स्वामी विवेकानंद जी के क्लब में ही उसका पार्ट बनी हूँ। और जब अब मैं जॉब कर रही हूँ तो वो भी सेम स्कूल है, तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हर समय है और मैं खुद को बहुत सशक्त मानती हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स हैं। और शायद मैं इसी करके आज आपके सामने बैठी हुई हूँ और आपसे बातचीत कर रही हूँ।
0: मैं चाहूंगा कि जो आपने उनका एक कोट मेंशन किया
1: जी,
0: आप
1: जी,
0: प्लीज उस कोट को दोबारा कहिए।
1: जी जरूर। Arise awake and stop not till the goal is achieved।
0: सभी श्रोताओं और युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी जिंदगी में लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप बनाइए और जब तक हम उसको प्राप्त नहीं करते, आप निरंतर उसके लिए काम करते रहिए। और मेरा विश्वास है कि जब हम उस काम को निरंतर करते रहते हैं तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं। बहुत खूब। और इंदु जी, यहाँ पर आप कोई कविता हमें, हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे?
1: जी जी जरूर। मैं सशक्त हूँ, नारी हूँ, तो जाहिर सी बात है कि नारी के बारे में जरूर बोलूंगी
0: जी।
1: कि कोमल हूँ पर निर्बल नहीं, साहसी हूँ पर दुर्बल नहीं, लक्ष्मी हूँ और दुर्गा हूँ, हूँ शाश्वत रूपिणी शक्ति में, हूँ सहनशील और धैर्यवान भी, ओजस्वी और विदुषी भी मैं, मुक्त हूँ हर छल कपट से, ममत्व प्रेम का अथाह सागर हूँ मैं, भाव हूँ और अभिव्यक्ति भी, हूँ किरण पुंज सूर्य की, चिरकाल से अभ्यासरत हूँ, कर्मशील प्रयासरत वचनबद्ध सृष्टि के सृजन में, हर दायित्व अपना निभाऊंगी, शनै शनै उभरूंगी मैं, शनै शनै उभरूंगी मैं, हर शय में यूं बिखरूंगी मैं, हो ये धरा या वो गगन, चहु और होगा गान ये, हो ये धरा या वो गगन, चहु और होगा गान ये, कोमल है तू निर्बल नहीं, साहसी है तू दुर्बल नहीं, कोमल है तू निर्बल नहीं, साहसी है तू दुर्बल नहीं, हाँ मैं सशक्त हूँ।
0: क्या बात है इंदु जी। मैं चाहूंगा कि इस कविता के माध्यम से जो आपने, जो संदेश आपने देना चाहा, मैं चाहूंगा कि इसी कविता को सामने रख के आप हमारी जो नारी समूह है
1: जी,
0: उनको
1: जी,
0: आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: उनके लिए एक बहुत ही सुंदर भाव है मेरा
0: जी,
1: जिसका शीर्षक है जज्बा बरकरार रखिए। कि हाँ आप खास हैं, बस यही एक जज्बा बरकरार रखिए
0: जी।
1: कि हाँ आप खास हैं, बस एक यही जज्बा बरकरार रखिए, गमों में भी मुस्कुराने का एक अलग अंदाज रखिए, गमों में भी मुस्कुराने का एक अलग अंदाज रखिए, किसी को हो या ना हो आप खुद पे एतबार रखिए और बेहिसाब रखिए
0: जी।
1: आप खुद पे एतबार रखिए और बेहिसाब रखिए, बेशक बहे आंसू आंखों से, बेशक बहे आंसू आंखों से, पर फिर भी मुस्कुराहट को अपने होठों का पहरेदार रखिए, पर फिर भी मुस्कुराहट को अपने होठों का पहरेदार रखिए, आप खास हैं, बस एक यही जज्बा बरकरार रखिए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। और हमारा भी मकसद यही है, FM 90 भी हमेशा कोशिश करता है कि जो हमारी नारी शक्ति है उनको समय दिया जाए, उनको मौका दिया जाए, ताकि वो अपने समाज में जितना भी वो देते हैं उससे भी ज्यादा वो समाज को दे पाएं, अपने घर को दे पाएं, अपने बच्चों को दे पाएं, और अगर हमारा युवा सक्षम है तो हमारा देश भी सक्षम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इंदु जी, हम सबका जीवन और एक कवित्री का जीवन में साधारणतः आसपास क्या घटित हो रहा है, कितना आवश्यक है?
1: बहुत आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना आवश्यक है। देखिए, समाज में, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में जो भी घटित हो रहा है, उसको एक सच्चे लफ्जों में और उसको सही तरीके से आम आवाम के सामने लाना बहुत जरूरी है। और ये काम एक लेखक का ही है, एक कवि का ही है, क्योंकि वो अपने लफ्जों के जरिए ही अपनी चीजों को, अपनी बातों को समाज तक पहुंचाता है।
0: अपने शब्दों के जरिए वो लोगों तक अपनी बात को पहुंचाता है।
1: और बहुत जरूरी है ये,
0: यानी कि ऑब्जर्वेशन
1: बहुत जरूरी है।
0: मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार भी हमेशा जब भी वो घर से निकलता है वो ऑब्जर्व हर कोई चीज करता है, तभी वो अलग अलग किरदार निभा सकता है
1: जी।
0: पर कवि या कवित्री इतने सारे किरदार निभाते हैं जो अनगिनत होते हैं, क्योंकि जहां पर उसका ध्यान जाता है और उसी पर वो लिखना शुरू करता है। जब रेडियो वितस्ता FM 90 के साथ आपका संपर्क हुआ
1: जी,
0: या हमारे साथ संपर्क हुआ
1: जी,
0: क्या एक कवि का मन वहां पर आया कि आपने क्या हमारे बारे में या हमारे FM 90 के बारे में भी कुछ लिखा?
1: यस ऑफ कोर्स सर, जैसे कि एक हुनर है मुझमें कि चेहरे के साथ साथ मैं लोगों के रूह को भी पढ़ लेती हूँ।
0: बहुत खूब।
1: तो आपसे मेरी सिर्फ बात ही हुई थी, अब तक मैं आपसे मिली नहीं थी
0: जी।
1: तो बस ये यमुनानगर से अम्बाला तक आते आते बीच रास्ते में बस ये कुछ ख्याल आए हैं।
0: अच्छा, इसका सृजन अभी हुआ है?
1: जी हाँ जी हाँ। तो सुनिएगा कि क्या गजब ख्वाब दिखाते हैं आप
0: जी।
1: कि क्या गजब ख्वाब दिखाते हैं आप, संघर्षरत लम्हों को भी खुशनुमा बनाते हैं आप, के संघर्षरत लम्हों को भी खुशनुमा बनाते हैं आप, विभिन्न प्रतिभाओं को वितस्ता के जरिए, विभिन्न प्रतिभाओं को वितस्ता के जरिए जनता से रूबरू कराते हैं आप।
0: क्या बात,
1: यूं ही थोड़े ना भरत जी कहलाते हैं आप।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा इनाम आज तक मुझे इस सफर में नहीं मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया जनाब।
0: इंदु जी, आप एक माँ है, शिक्षिका है
1: जी।
0: बच्चे आपके मन को कैसे अपने जैसा बना लेते हैं, कोई कविता इस संदर्भ में हमारी श्रोताओं को आप कृपया सुनाइए।
1: जी हाँ, जैसे कि मैं एक शिक्षिका हूँ और माँ भी हूँ, तो ये बात है उन दिनों की, मेरा छोटा बेटा काफी बीमार हो गया था, हॉस्पिटलाइज था
0: जी।
1: और काफी बीमार हो गया था, तो उस दौरान भी मुझे कुछ लफ्ज, कुछ भावनाएं उमड़ रही थी जिन्होंने मुझे चारों ओर से घेर रखा था, क्योंकि मैं एक अध्यापिका भी हूँ, तो मुझे अपना वर्क प्लेस भी देखना था, वहां भी बच्चों को देखना है, और एक मेरा अपना बच्चा जो जूझ रहा है मुझे उसे भी देखना था। लाइक दिस कि मुझे दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना था, एंड आई डिड नाइसली बोथ जॉब्स। लेकिन उस दौरान एक भाव आया, उसे सुनिएगा कि रो मत। एक माँ का भाव देखिएगा कि वो किस तरह खुद को भी स्ट्रांग कर रही है और अपने बच्चे को भी स्ट्रांग कर रही है, कि रो मत। रोने से अगर कम हो जाता दर्द तो रो लेती मैं भी
0: जी।
1: रो मत, रोने से अगर कम हो जाता दर्द तो रो लेती मैं भी, हौसले से ही जीते जाते हैं हो जंग या फिर दर्द कोई।
0: वाह।
1: हौसले से ही जीते जाते हैं हो या जंग कोई या दर्द कोई, रो मत वरना फिर मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगी। रो मत वरना फिर मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगी, क्या संभालूंगी तुझको जब खुद ही ना संभल पाऊंगी, क्या संभालूंगी तुझको जो खुद ही ना संभल पाऊंगी, सहन कर इस दर्द को, सहन कर इस दर्द को, तुझको जो यूं डरा रहा मत टेक घुटने आगे इसके, यूं ही तू है बहादुर बहुत, मिलकर हराएंगे इस दर्द को, तू है बहादुर बहुत, मिलकर हराएंगे इस दर्द को, आथाम हाथ मेरा।
0: क्या बात,
1: आथाम हाथ मेरा, मैं तो छीन लाऊंगी तुझे यम के पास से भी, मैं तो छीन लाऊंगी तुझे यम के पास से भी, बस अब रो मत, रोने से गर कम हो जाता तर तो रो लेती मैं।
0: क्या बात है इंदु जी, हम नमन करते हैं आपको, एक माँ को, क्योंकि माँ ही हमारी सृष्टि की जननी है, और जब वो इतनी स्ट्रांग है तो उसके आसपास का जो माहौल है वो कितना स्ट्रांग होगा, सक्षम होगा, इसका हम अंदाजा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कविता के लिए। और अब एक और गीत की गुंजाइश है हमारे पास। हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता आपका एक और मनपसंद गीत सुने। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका मनपसंदीदा सिंगर यानी कि गायक कौन है?
1: मेरे मनपसंदीदा सिंगर हैं सतिंदर सरताज जी, पंजाबी सिंगर हैं
0: जी।
1: और उनकी हाल ही में पीछे शायर मूवी आई थी
0: जी,
1: तो उसे मैंने देखा और उसका एक गाना है कोई तेरे नाल मोए पुराना तू मने अना मन ही। और वो जिस भाव से वो लिखते हैं ना, बहुत नेचुरल लिखते हैं और इतना मतलब ठहर के लिखते हैं कि मतलब सीधा रूह को स्ट्राइक करता है। उनको मैं इतना सुनती हूँ, उनको पढ़ती हूँ और मैं उनसे मिलना भी चाहती हूँ।
0: मैं चाहूंगा कि आप इस गीत को एक बार फिर गुनगुनाए
1: जी,
0: ये सोच के कि जैसे सतिंदर जी गा रहे हैं।
1: वाओ।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम काव्य गोष्ठी और हमारे साथ हैं शिक्षा विद्वान और कवित्री श्रीमती इंदु शर्मा जी। इंदु जी, आप कविता के साथ साथ क्या लिखना पसंद करती हैं?
1: सर, कविता के साथ साथ मैं शॉर्ट स्टोरीज जैसे लघु कथाएं, दोहे
0: जी,
1: ये सब भी मैं लिखना पसंद करती हूँ।
0: तो हमारे श्रोताओं को आप कुछ आपके लिखे हुए जो दोहे
1: जी,
0: वो सुनाएं, क्योंकि दोहा हमारे समाज में, हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में एक बहुत बड़ा रोल करता है, जो कुछ शब्दों में बहुत कुछ बता देता है।
1: जी जी, तो ये दोहा मेरा है, पहले तो मन के भाव पे है कि तृष्णा मिटे न मन की, मिट मिट गयो शरीर। तृष्णा मिटे न मन की, मिट मिट गयो शरीर, ऐसो वैरी मन बावरो, ऐसो वैरी मन बावरो, हर पल रहे अधीर।
0: क्या बात,
1: तो ये तो
0: इसका आप कुछ अर्थ भी बता सकते हैं?
1: अर्थ ये है कि देखिए, जो हम लोग हैं, तृष्णा मीन्स चीजों के पीछे कामनाएं, इच्छाएं, हमारा लालच कभी भी खत्म नहीं होता। शरीर मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं इंसान, लेकिन तृष्णा जो भूख है वो कभी भी नहीं मिटती है
0: जी।
1: और मन जो है हमारा, सबसे मन जो है इतना चंचल है, इतना बावरा है, पागल बना के रखता है, मतलब वो हर समय अधीर रहता है। अगर एक इच्छा पूरी होगी तो अब मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, तो इस पर है ये दोहा। इसके बाद है प्रेम पर है
0: जी।
1: सच्चे प्रेम का मतलब एक रूप दिखाता हुआ, एक आईने की तरह बोल लीजिए कि देह की देहरी सब टपे, मन की टपे न कोई। देह की देहरी सब टपे, मन की टपे न कोई, जो मन की देहरी टपे सो सच्चा प्रेमी होए। इस दोहे में मैंने ये भाव दिए हैं कि सच्चा प्रेम क्या है
0: जी?
1: ये आपके जो बाहरी व्यक्तित्व है ये उसको नहीं दर्शाता। सच्चा प्रेम वो है जो किसी की आत्मा, किसी के मन के अंदर आप समा जाओ, या कोई आपकी आत्मा आपके मन में कोई समा जाए, वो सच्चा प्रेम है अकॉर्डिंग टू मी। और एक और है कि रंग खरा एक प्रेम का, दूजा रंग ना कोई। रंग खरा एक प्रेम का, दूजा रंग ना कोई। यूं तो रतन अनेक हैं, यूं तो रतन अनेक हैं, पर मोती सा ना कोई।
0: क्या बात,
1: इकट्ठा इनका एक मैंने भाव दिया है कि हर रंग में प्रेम का रंग जो है वो सबसे अनुपम है, उससे बढ़कर कोई भी रंग नहीं है जीवन में। और ऐसे तो अनेक मोती हैं आजकल, अनेक रत्न हैं इस पूरे संसार में, लेकिन मोती जैसा रत्न कोई नहीं है।
0: क्या बात है, कवि या कवित्रियां
1: जी
0: प्रेम के ऊपर ही लिखती हैं
1: जी,
0: या समाज में जो आसपास हमें दिख रहा है उस पे लिखती हैं, या बच्चों पर। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट रहता है, क्या वो एक ही है या कुछ भी जो आपके सोच या आपके ऑब्जर्वेशन में आता है?
1: देखिए, मैं शिक्षिका हूँ और नारी हूँ, तो आप ये समझ सकते हैं कि जीवन के हर रंग, सुख दुख, हर पहलू, हर छोटी छोटी चीजों को मैं बारीकी से लेती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, और हर जीवन के हर रंग पर मैं अपनी कलम को आजमाती हूँ, और मैं हर लम्हे पर हर चीज को देख कर बारीकी से उस पर लिखती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रंग है, ढेरों रंग है जीवन के, और मैंने अपने जीवन के हर छोटे छोटे लम्हों को कविताओं में पिरोया है।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी कि आने वाले दिनों में जब आपके पास समय होता होगा, आप अपना कविता संग्रह पढ़ेंगे, तो आप उन पुरानी यादों को एक बार फिर याद करते होंगे। आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपका कविता संग्रह प्रकाशित हुआ
1: जी,
0: तो उस समय कैसा आपको लगा, और उसके लिए आपने कितनी सारी मेहनत करी, और कवि है या कवित्रियां हैं
1: जी,
0: उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जब एक कविता लिखना शुरू हो जाता है तो वहीं से ही एक कविता संग्रह की शुरुआत होती है, तो आप प्लीज बताइए।
1: सर, बात ऐसे है कि जब मैं कविताएं लिखती थी, मुझे विचार आते थे तो मैं उनको संजोती थी, लिखती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हमेशा से ना एक छोटा सा डर था अंदर कि शायद तब तक मैंने खुद को नहीं पहचाना था कि मैं क्या हूं या मैं क्या कर सकती हूँ सोसाइटी के लिए
0: जी।
1: तो मुझे एक डर रहता था कि खुद को, मैं कहती थी कि मेरे पास जैसे डायरीज हैं तो मैं उनमें लिखती थी जो भी ख्याल आते, तो मैं खुद को कहती थी कि इंदु तू ये लिख तो रही है पर पता नहीं ये कहीं यूजलेस ना हो, ऐसे ही पड़े रहेंगे, किसे पता चलेगा कि तुमने इतना अच्छा लिखा है, क्योंकि देखिए माँ को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे एक लेखक को उसका हर लफ्ज बहुत अजीज होता है। तो मुझे भी ये लगता था कि मैं लिख तो रही हूँ, हर रोज लिख रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे ख्याल आ रहा मैं लिख रही हूँ, लेकिन क्या क्या कभी मतलब वो सवाल भी पूछते डर लगता था मन को। लेकिन हुआ यूं कि कोरोना काल के दौरान मेरे खुद को काफी समय मिला, तो उस दौरान कुछ और कविताएं बहुत अच्छे से आई, और जो मैंने ऑलरेडी लिखी थी उनको मैंने फिर से पढ़ा, मैंने उनको फिर से एडिट किया, बार बार उनको पढ़ा, अपने पतिदेव को सुनाया। मेरे पार्टनर बहुत अच्छे हैं तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें सुनाया और बार बार उनको एडिट किया, जहां मुझे लगा कि नहीं ये हल्का शब्द है, थोड़ा सा इसका रिदम ताल थोड़ा और अच्छा हो सकता है, यहाँ ये लफ्ज होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, तो वो एडिट किया। कहीं से मुझे किसी फ्रेंड से मुझे एक प्रकाशक का नंबर मिला, तो नूर साहब जी, उन्होंने मतलब प्रोत्साहित भी किया कि बहुत अच्छी बात है, इतनी छोटी एज में आप उस तरफ जा रहे हो और आपके पास इतनी सारी बल्क में यू हैव मतलब मोर देन 200 कविताएं आप लेकर आए। कुछ बारीकियां भी उन्होंने समझाई और उन्होंने इसमें हेल्प की कि मेरी एक पुस्तक का रूप देने में, काव्य संग्रह के रूप में मेरी पुस्तक को लाने में उन्होंने मदद की, अशोक नूर साहब जी जो जगाधरी के हैं, वो भी एक प्रख्यात प्रोफेसर हैं और शायर हैं, नज़्म और गजल लिखते हैं।
0: आपने अपनी बातों में अभी अपने पतिदेव जी की बात की
1: जी,
0: आमतौर पर हमने देखा है कि कोई शायर है
1: जी,
0: जब वो कोई शायरी लिखता है या लिखती है
1: जी जी,
0: तो वो हमें पकड़ के कहते हैं कि आप मेरे ये शेर सुनो, और जबकि हम भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जो आपके हस्बैंड है
1: जी,
0: जब आप उनको अपनी कविता सुनाते हैं
1: जी जी,
0: तो क्या रिएक्शन रहता है उनका?
1: उनका रिएक्शन बहुत अच्छा रहता है, टचवुड, वो एक गुरु की तरह है, वो मतलब मैं उनकी छाया हूँ, मैं कुछ भी नहीं उनके बिना। उन्होंने आफ्टर मैरिज, मैं मैरिज से पहले मेरी सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट थी
0: जी,
1: और आफ्टर मैरिज उन्होंने मुझे मेरी हायर एजुकेशन कंप्लीट करवाई, और अभी भी मुझे सपोर्ट करते हैं, अभी भी लाइफ में मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ और वो हमेशा मेरे साथ हैं, वो दो कदम आगे और दो कदम पीछे, मेरी साइड्स हर तरफ वो मेरे साथ रहते हैं। और जब भी मैं कोई कविता लिखती हूँ तो सबसे पहले मुझे होता है कि मैं उन्हें कहीं भी वो मेरे पास हो ना हो कि उन्हें सुनानी है, तो उसमें एडिटिंग करना, उसको सुनना, उसमें सुधार करना, वो मेरे गुरु हैं, वो हर समय मेरे साथ, इतना मैं खुद को नहीं सपोर्ट करती जितना वो मुझे सपोर्ट करते हैं।
0: क्या हम माने कि वो आपकी कविताओं के क्रिटिक भी है?
1: यस ऑफ कोर्स, वो मुझे बोल देते हैं कि ये क्या लिखा है तुमने, यहाँ तो ऐसे होना चाहिए था।
0: तो मेरा तो मन कर रहा है कि सुशील जी
1: जी
0: हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगा उनकी भी राय लूं। सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। जब इंदु जी आपको अपनी कविताएं सुनाती हैं तो आपके भाव क्या होते हैं? आप दिल से सुनते हैं या उसमें दिलचस्पी लेते हैं, और हमारी श्रोताओं को और अपकमिंग जो पोइट या पोइटेस हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
2: नमस्कार भरत जी, जैसे कि आपने कहा कि इंदु जी आपको कविताएं वगैरह सुनाते हैं, पहले तो कुछ अजीब सा लगता था
0: जी,
2: लेकिन अब सुनते सुनते ऐसा लगता है कि वो जीवन का हिस्सा बन गया है
0: जी,
2: और सुनने में अच्छी लगती हैं। जब से ये बुक आई है तो लगता है कि हाँ ये कुछ कर पा रही है
0: जी,
2: कुछ कर रही है
0: जी।
2: बाकी रही सुधार की बात, तो ये होता है कि सुनते सुनते थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें ये लिखना चाहिए, ये थोड़ा सा बताना चाहिए। और बाकी मैं नई उभरती हुई जो लेखिकाएं हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप भी लिखिए, अच्छा लिखिए, और उनके परिवार वाले उनका सपोर्ट करें कि वो भी एक अच्छी लेखिका बन पाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय दी और ये हमारे श्रोताओं के लिए भी एक सीखने समझने की बात है। और आखिर में मैं पूछना चाहूंगा इंदु जी के साथ साथ, क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में सुशील जी भी एक शायर बनेंगे और उनका भी एक कविता संग्रह आ जाए?
2: नहीं नहीं, इंदु जी ही बहुत है जी, एक ही शायर, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है जी, तो उसी को रहने दीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
2: धन्यवाद जी भरत जी, आपने हमें बुलाया और इतने सुनहरे पलों को जीने का एहसास करवाया, और ये हमें आज बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। पहले हम ये मोबाइल पे टीवी पे देखते थे कि क्या स्टूडियो होता है, आपने सारा हमें दिखाया कैसे क्या होता है, कैसे ये रेडियो का ये होता है, हम तो सिर्फ सुनते थे, आज हमें देखने का बोलने का ये मौका मिला, ये बहुत अच्छा और बहुत यादगार पल है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। कार्यक्रम का इंदुजी समय जो है वो समाप्त होने को है, मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने गुरुजन के लिए क्या कहना चाहेंगे।
1: मैं अपने गुरुजनों को तहे दिल से उनका शुक्रिया आभार प्रकट करना चाहूंगी। तो गुरु तो देखो हर समय आपके आस पास चारों ओर गुरु है, तो मैं समझती हूँ कि गुरुओं की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी हैं और मैं भी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे जीवन में बहुत से गुरु हैं जिनकी ब्लेसिंग्स हैं और उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से आज जीवन में मैं आगे कुछ कर पा रही हूँ और बहुत कुछ अभी करना बाकी है। उम्मीद करती
0: हूँ। हम उम्मीद करते हैं और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं, आपको इस सफर में कामयाबी मिले और आपके बहुत सारे कविता संग्रह आए, और जब भी आपका कविता संग्रह आए आप हमारे पास भेजें, हम भी उन कविताओं को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। आखिर में क्या आप हमें कोई अंत में कोई कविता सुनाना चाहेंगे?
1: जी जरूर, एक प्रेम रस पर है
0: जी।
1: एक अल्हड़ अपने प्रियतम के लिए कुछ भाव लिए हुए कि ढलते ही सूरज के आगोश में तेरे घर कर जाऊं, कि ढलते ही सूरज के आगोश में तेरे घर कर जाऊं, आ तुझ में मैं तुझ में तुम होकर रह जाऊं, कि आ तुझ में तुम होकर रह जाऊं, कुछ और नहीं ख्वाहिश बस इतनी सी मेरी, कांधे पे तेरे रख सर अपना, अब मैं भी चैन की नींद सो जाऊं, जब सब गुजरे और हो सह, फिर बन सूरज की पहली किरण, बिखरूं आंगन में तेरे उजाले से तेरा जीवन भर दूं, संग रहूं तेरे बन साया, खुशियों से तेरा मैं घर भर दूं, और फिर ढलते ही सूरज के आगोश में तेरी घर कर जाऊं, आ तुझ में तुम होकर रह जाऊं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। और इसी कविता के साथ हम इस कार्यक्रम का करते हैं समापन। इंदु जी आपका और सुशील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आमंत्रण पर यहाँ आने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, अपनी कविता पाठ करने के लिए। हम आपके आभारी हैं और हम ये चाहते हैं कि आपके दिन अच्छे हों।
1: रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और भरत जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया और मुझे अपनी कविताएं आपके साथ साझा करने का ये सुनहरे पल दिए। तो मैं इनको भी ढेरों शुभकामनाएं दूंगी कि दिन प्रतिदिन इनकी भी जो उन्नति है वो परमेश्वर चाहें और करें, और हम भी समय समय पर आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
0: और रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 7। आज के आमंत्रित मेहमान थे कवित्री श्रीमती इंदु शर्मा। रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है।

हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तू लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों, अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुप

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप डॉक्टर कुलवंत शेखर के साथ की गई बातचीत सुनेंगे। आपकी बातचीत का विषय है जोड़ों का दर्द, कारण और निदान।
2: डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब आज हम बात करेंगे जोड़ों का दर्द, ये क्या है?
3: रमेश जी ऐसा है, जोड़ों का दर्द आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है और हर एज ग्रुप में देखा जा रहा है। आजकल आप देखते होंगे काफ़ी सारे लोग कंप्लेंट करते हैं जोड़ों के दर्द में, और इसमें अलग अलग जोड़ इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग टाइप के आर्थराइटिस में। नॉर्मली हम लोग इसको कहते हैं आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द को, लेकिन आर्थराइटिस भी काफ़ी किस्म का होता है। एक आर्थराइटिस है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस
2: जी,
3: जो कि एज के साथ होता है। वो कोई बीमारी नहीं है एज सच, लेकिन वो ये है कि जैसे हमारी बाकी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, गाड़ी पुरानी हो जाती है, वैसे ही जोड़ जो हैं हमारे उसमें घिसना शुरू हो जाते हैं, उसमें डिजनरेशन हो जाती है कार्टिलेज की, जिसकी वजह से पेशेंट को डे टू डे एक्टिविटी में
2: जोड़ में जो ग्रीस होती है उसको
3: ग्रीस नहीं कह सकते हैं, हम लोकल भाषा में ग्रीस ही कहते हैं लोग
2: जी, जी, जी।
3: लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जोड़ में जहां भी फ्रिक्शन होती है वहां पे हड्डी के ऊपर एक कार्टिलेज होता है
2: जी।
3: वो कार्टिलेज की डिजनरेशन होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाती है, तो विद द रिजल्ट क्या होता है कि उसमें बोन्स जो दो ज्वाइंट बनाती हैं उनमें फ्रिक्शन होना शुरू हो जाती है।
2: डॉक्टर साहब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शरीर में कहाँ कहाँ पे जोड़ है?
3: हर जगह है, यू कैन सी, आप देखें हिप ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट है, शोल्डर है, एल्बो है, रिस्ट है, ये हैं बड़े जोड़ मेजर ज्वाइंट्स। बाकी माइनर ज्वाइंट्स होते हैं जो आपकी उंगलियों में हैं, पाँव में हैं, तो वो होते हैं छोटे जोड़।
2: तो यहाँ दर्द होना ज़रूरी है?
3: नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि अलग अलग आर्थराइटिस में अलग अलग जोड़ इन्वॉल्व होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजुअली छोटे जोड़ इन्वॉल्व नहीं होते हैं
2: जी,
3: बड़े जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे नी ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। अब उसमें भी देखा गया है कि जो एशियन पॉपुलेशन है हम लोग, क्योंकि हमारा पोस्चर जो है हम यूजली स्क्वैट करते हैं, चौकड़ी मार के बैठते हैं, इसलिए एशियंस में नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन है और यूरोपियंस में हिप का ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन है,
2: क्योंकि
3: वो लोग खड़े रहते हैं
2: जी,
3: बिकॉज ऑफ स्क्वैटिंग हमारे में नी का ज़्यादा कॉमन देखा गया है। बट ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये 50 के ऊपर ही देखा जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये बढ़ती जाती है, तो उसको बचाने का तो एक तरीका ये है कि हम लोग
2: ये तो हमने बताया कि आपने बताया कि जो ये 50 साल के बाद ही इस तरह की बीमारी होती है जोड़ों में, तो 50 साल से कम,
3: 50 साल से कम जो है वो ओ टाइप का आर्थराइटिस होता है, उसको हम कहते हैं, एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम लोग गंठिया कहते हैं हिंदी में, उसमें यूजुअली बड़े जोड़ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसमें छोटे जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे उंगलियों के जोड़ हो गए
2: जी
3: वो इन्वॉल्व होते हैं, बड़े जोड़ रेयरली इन्वॉल्व होते हैं बट मेनली छोटे जोड़ होते हैं, और उसकी देखा जाता है कि उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है गंठिया वो कॉमनली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, वो मेल्स में कम,
2: जैसे हमने आम भाषा में कहा कि ग्रीस कम हो जाती
3: जी
2: है।
3: हाँ जी हाँ,
2: तो ये तो आपने बताया कि 50 साल के बाद
3: जी जी
2: 50 साल से कम उम्र के जो लोग
3: जी
2: हैं
3: हाँ,
2: उनमें किस तरह की कमी पाई जाती
3: उनमें
2: है?
3: कमी नहीं होती है, उसमें वही बता रहा हूँ मैं कि उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली होता है, छोटे जोड़ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें ग्रीस का नहीं होता है, उसमें ये होता है कि एक रूमेटॉइड फैक्टर होता है उनमें पाया जाता है वो, क्योंकि जब हम टेस्ट करवाते हैं नॉर्मली वो दैट इज़ नेगेटिव, लेकिन इनमें वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसमें एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि मॉर्निंग में जब पेशेंट उठता है उसकी हाथों में स्टिफनेस हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और वो स्टिफनेस सिग्निफिकेंट होती है, मान लीजिए कोई एक घंटा जब वो रहती है स्टिफनेस, तो पेशेंट को इमिजिएटली कंसल्ट कर लेना चाहिए अपने ऑर्थोपेडिशियन को या रूमेटोलॉजिस्ट को, सो दैट ट्रीटमेंट जल्दी हो सके। वो इसलिए कर जरूरी है क्योंकि अगर आप मान लीजिए पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेता है, ट्रीटमेंट खाली पेन के लिए नहीं है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी है बीमारी है कि जो आप समझिए 10-15 साल के बच्चे में भी शुरू हो सकती है
2: जी,
3: और पेशेंट अगर ट्रीटमेंट नहीं लेता है उसमें डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, फिर आगे हाथ टेढ़े हो जाते हैं, पाँव टेढ़े हो जाते हैं, उसको बचाने के लिए पेशेंट ने ट्रीटमेंट लेना है, और उसका ट्रीटमेंट थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड होता है
2: जी।
3: एक और आर्थराइटिस होता है उसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस, गाउट होता है उसको
2: जी,
3: हम, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पेशेंट का यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाती है, और यूजुअली जब वो कॉमनली देखा जाता है मेल्स में, गाउटी आर्थराइटिस फीमेल्स में कम होता है मेल्स में ज़्यादा होता है।
2: इसका कारण क्या है?
3: इसका कारण है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड यूजुअली बढ़ता है, तो उसमें पेशेंट ने कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। जैसे
2: यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो ये दर्द कहाँ से शुरू हो जाता है?
3: हाँ, इसमें कोई भी जोड़ इन्वॉल्व हो सकता है, छोटे जोड़ भी हो सकते हैं, बड़े जोड़ भी हो सकते हैं, बट यूजुअली बड़े जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें भी कोई एज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किसी भी एज में शुरू हो सकता है, और इसमें यूजुअली प्रॉब्लम होती है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। सो पेशेंट को क्या करना है, प्रोटीन्स कम लेने हैं, जैसे प्रोटीन्स मीन्स दालें पेशेंट ने कम लेनी।
2: डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ठंड में अक्सर
3: हाँ,
2: लोग इस तरह की शिकायत करते हैं।
3: वो ऐसा इसलिए होता है कि ठंड में यूजुअली जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंट्रैक्ट कर जाती हैं, उसको हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है जोड़ों की। गर्मियों में वेजो डायलिटेशन हो जाती है, विद द रिजल्ट पेशेंट की जोड़ थोड़े से ठीक रहती है, वेस्कुलर ठीक रहती है, तो इसलिए वो कम कंप्लेंट करते हैं गर्मियों में।
2: डॉक्टर कुलवंत, आप हमारे साथ बने रहेंगे इस कार्यक्रम में। आपकी पसंद का कोई गाना जो हम अपने सुनने वालों तक पहुंचाएंगे इस कार्यक्रम के जरिए?
3: जी हाँ, सुना दीजिए, एक लोफर फिल्म का एक गाना है, आज मौसम बड़ा बेईमान।
2: रफी साहब की आवाज़।
3: जी हाँ जी
2: जी, आपकी पसंद हाजिर है।

0: आज हमारे इस कार्यक्रम में बने रहेंगे डॉक्टर कुलवंत शेखर प्रोग्राम के आखिर तक। डॉक्टर साहब, जोड़ों का दर्द, इसके बारे में बात हो रही है, अब हम बात करेंगे कि ये बीमारी कैसे होती है इंसान में, ये कैसे पाई जाती है, इसका कारण क्या है?
1: कारण वही बात फिर आ जाती है कि अलग अलग टाइप ऑर्थराइटिस में अलग अलग कारण है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड है।
0: एक तो अभी आप बात कर रहे थे कि यूरिक एसिड
1: गाउट, दैट इज गाउटी आर्थराइटिस। जी हाँ, गाउटी आर्थराइटिस में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है।
0: इस तरह की बीमारी ज्यादा पाई जाती है, खासतौर पे जब हम इस एरिया की बात करें?
1: नहीं, नॉट स्पेसिफिकली इस एरिया में कोई ऐसा नहीं है।
0: आप जब पेशेंट देखते हैं तो कौन सी बीमारी देखते हैं आप, जब जोड़ों के दर्द की बात करें, जो आपने इनको?
1: जी हाँ, हमारे पास हर किस्म के पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे। तो वही आ गया कि अगर 50-60 से ऊपर हो पेशेंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। फीमेल्स यूजुअली हो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, तो मेल्स में गाउटी आर्थराइटिस ज़्यादा पाया जाता है।
0: तो यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है, कारण क्या है, ये बढ़ जाता है तो ऐसे
1: कारण
0: में?
1: ऐसा है रमेश जी, उसमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, तो उसमें प्यूरिन जो है वो बढ़ जाती हैं। तो उसमें पेशेंट को हमने थोड़ा एडवाइज़ करना होता है प्रिकॉशंस के लिए। जैसे कोई भी हाई प्रोटीन डाइट है वो पेशेंट ने नहीं लेनी है। जैसे हो गई एक दालें हो गई, वो पेशेंट ने अवॉइड करनी है। रेड मीट हो गया, पेशेंट ने अवॉइड करना है। पनीर हो गया, वो पेशेंट ने अवॉइड करना है। अल्कोहल पेशेंट ने अवॉइड करनी है, बिकॉज इन सब चीज़ों से पेशेंट का प्रोटीन वो लेवल बढ़ जाएगी, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और पेशेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी।
0: अब जब घुटने की दर्द की बात करते
1: जी
0: हैं,
1: हाँ
0: किसी में पाया जाता है एक ही घुटने में दर्द है,
1: जी हाँ,
0: ऐसा क्यों?
1: वो इनिशियल स्टेज में पहले एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है और बाद में सब्सिक्वेंटली जो है फिर दूसरा जॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। पेशेंट अगर इनिशियली ही रिपोर्ट करता है तो एक ही में कंप्लेंट करेगा वो यूजुअली।
0: डॉक्टर साहब, जब खुदा न खास्ता कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई टूट जाती है कोई
1: जी
0: हड्डी,
1: जी
0: तो इसके जोड़ के लिए क्या कुछ किया जाता है आमतौर पे, जब घरेलू इलाज भी लोग करते
1: जी
0: हैं?
1: हाँ, उसमें रमेश जी ऐसा है कि दो तीन प्रिकॉशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जो आजकल लोग इग्नोर कर रहे हैं। एक तो मालिश नहीं करनी चाहिए कोई भी। लोग यूजुअली रिजॉर्ट करते हैं, वो मालिश करा लेते हैं, किसी देसी के पास चले गए, वो क्या है, वो एक तो मालिश कर देते हैं या फिर टाइट बैंडेजेस बांध देते हैं। वो उससे क्या होता है कि फ्रैक्चर चाहे छोटा सा हो लेकिन टाइट बैंडेज की वजह से पेशेंट की जो सर्कुलेशन रुक जाती है। और आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि मैंने काफ़ी सारे केस देखे हैं कि फ्रैक्चर बहुत छोटा सा था लेकिन उस टाइट बैंडेज की वजह से पेशेंट की जो है एम्पुटेशन हो करनी पड़ी बाजू की, क्योंकि उनने टाइट बैंडेज बांधे थे, वेस्कुलरिटी ख़त्म हो गई थी, आगे स्वेलिंग हो गई थी। और जब पेशेंट स्वेलिंग हो जाती है आगे वो जाते हैं, तो वो देसी जो लोग होते हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं, वो उनको कहते हैं कि ये ठीक होने का साइन है, वायरस होता उल्टा है। तो सबसे पहले ये है कि दे शुड नॉट गो टू लोकल बोन सेटर्स। जो लोग मालिश करते हैं, टाइट बांधते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एट द मोस्ट मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है,
0: जी
1: एक स्प्लिंट लगा देनी जब भी उनको लगे फ्रैक्चर है। स्प्लिंट मीन्स कोई फट्टी ले लीजिए, वो लगा देनी है, बहुत टाइट नहीं बांधनी है, लूजली बांधनी है थोड़ी सी, ताकि पेशेंट को जो है सपोर्ट रहे और ट्रांसपोर्टेशन में उसकी पेन वेन ना हो।
0: आमतौर पे जब एक्सीडेंट होता है तो कौन सी बोन ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, किस में ज़्यादा
1: नहीं, कोई भी
0: फ्रैक्चर
1: बोन
0: होता है?
1: इन्वॉल्व हो सकता है रमेश जी, ऐसा है कि कोई भी बोन इन्वॉल्व होती है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का किस टाइप का एक्सीडेंट होता है। मान लीजिए कॉमनली देखा जाता है कि पेशेंट एल्डरली लोग जो है स्लिप कर जाते हैं, बाथरूम में स्लिप कर गए, घर में स्लिप कर गए, उनमें यूजुअली यू विल सी कि रिस्ट का फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन होता है। बाकी एक्सीडेंट में तो कोई भी बोन इन्वॉल्व होती है, थाई बोन, फीमर भी इन्वॉल्व होती है, लेग बोन भी इन्वॉल्व होती है, ऊपर वाली ह्यूमरस नहीं हो सकती। एक्सीडेंट में एनी बोन कैन बी इन्वॉल्व, लेकिन फॉल्स में यूजुअली जो है रिस्ट बोन इन्वॉल्व होता है।
0: आमतौर पे जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो जोड़ों के दर्द की कौन सी फॉर्मेशन आप देखते हैं?
1: आमतौर पे हमारे पास नी जॉइंट से पेन्स आते हैं लोग,
0: और इससे कनेक्टेड है यूरिक एसिड,
1: यूरिक एसिड भी और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी दोनों।
0: इसमें क्या कुछ करना चाहिए ताकि?
1: उसमें रमेश जी ऐसा है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें प्रिकॉशन पेशेंट ने लेना है कि स्क्वैट नहीं करना है। स्क्वैटिंग से वो तकलीफ जो है पेशेंट की ज़्यादा बढ़ती जाएगी डे बाई डे। पहला प्रिकॉशन ये है कि स्क्वैट नहीं करना है। नंबर टू, वेट रिडक्शन करनी है, अगर कोई पेशेंट ओवर वेट है वेट रिड्यूस करना है, क्योंकि सारा बॉडी का वेट जो है वो नीज पे ही पड़ता है। तो जब तक पेशेंट वेट रिड्यूस नहीं करेगा वो उसकी प्रॉब्लम जाएगी नहीं।
0: डॉक्टर कुलवंत शेखर हमारे साथ बने रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी पसंद का एक और गाना हम सुनना चाहेंगे।
1: रमेश जी, एक सफ़र फिल्म का गाना सुना दीजिए, हम थे जिनके सहारे।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप डॉक्टर कुलवंत शेखर के साथ की गई बातचीत सुन रहे थे। आपकी बातचीत का विषय था जोड़ों का दर्द, कारण और निदान। आपसे बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की, जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: होगा मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने
1: देखी
0: दुनिया।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

लाया है तब जाके कहीं हमने सर पे

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: रहो अपने पसंदीदा की।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। कभी 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति। पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अंबाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अंबाला की धरोहर के बारे में जाने। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: राम, अगर हम तुम्हें 5,00,000 रुपया दें तो क्या तुम दूसरा शरीर स्वीकार करोगे?
2: नहीं, कभी नहीं।
1: अच्छा राम, अगर हम तुम्हें 1,00,000 तोला सोना दें तो वापस जाओगे?
2: अयो नोको नोको नोको, अगर वो सोना लेके मैं नीचे गया तो वो लोग मेरे को स्मगलर समझ लेंगे।
1: राम, यहाँ। कुछ पियोगे?
2: क्या पिलाएंगे आप मेरे को? चाय पिलाएंगे या लस्सी पिलाएंगे?
1: नहीं, सोमरस।
2: सोमरस क्या होता महाराज? अरे अरे, दारू की बात कर रही थी, किधर की दारू पिलाएंगे? गोलकुंडे की या स्कॉचिस की?
1: नहीं, ये देवता लोगों का जलपान है, इसको पीने से तुम मत हो जाओगे।
2: मत हो जाऊंगा क्या? नीचे तो मैं कंट्री पीता था खाली, जल्दी पिलाओ महाराज।

0: Somros kakaları to koko kola gibi eser.
1: Maharaj.
2: Bolo.
1: Ek baat yaad aa gayi Maharaj mere.
2: Poochho.
1: Wo hamare niche hai. Ye peene ke liye kahin permit hai kahin permit nahi hai. यहाँ का क्या हिसाब किताब है?
2: मगर यहाँ कोई रोकथाम नहीं. ये देवलोक है, यहाँ जी भर के सोमरस पियो, जी भर के सोमरस पियो.
1: शुक्रिया महाराज. एक दूसरी बात भी याद आ गई महाराज.
2: बोलो.
1: इधर आओ. मैं शराब पीने से पहले ही आपको बोल देता हूँ, बाद में आप ये नहीं बोलना कि मैं नशे में बोल रहा
2: हूँ. अच्छा.
1: एक पोटी थी.
2: पोटी?
1: हाँ, मेरा मतलब एक छोकरी थी.
2: अच्छा.
1: उसका नाम था चुनिया.
2: सुनिया.
1: हो. आजकल के जमाने की वो छोकरी थी. उन्हें प्यार मेरे से करती थी, मेरे कंधे पे से किसी दूसरे को देखती थी और उसके दिमाग में कोई तीसरा रहता था, इसलिए उन्हें जल्दी मर गई. अगर आप मेरे को चुनिया से मिला दिए तो मैं बगैर किसी तकलीफ के किसकी भी बॉडी में बोलो घुस जाऊंगा.
2: शाबाश. तो फिर घुस जाओ उन बादलों के झुंड में जहां चुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है. जाओ.
3: चुनिया. अरे किधर है रे तू?

আজি ঢাসলে ডাল খুব ডাল না নিজে মাছ কান্দি লোক আপনি হাত খানা।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: नब्बे आशारिया सिफर एफ एम पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: ताज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण। सुनते रहिए दिल से।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 9। पेश करेंगे आरजे किरणी। आज का कार्यक्रम आधारित है बॉलीवुड के मशहूर लेखक आनंद बख्शी पर। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी और लेकर आई हूं सुनहरे पल का एक नया एपिसोड। आज हम उस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड के दिल की धड़कन बन गए थे, एक शख्स जो अपने कलाम के जादू से हर दिल को छू गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आनंद बख्शी साहब की, जिन्होंने प्यार, दोस्ती, जुदाई और जिंदगी के हर पहलू को अपने गीतों में पिरोकर अमर कर दिया। उन्होंने बस लिखा ही नहीं, जिंदगी के जज्बात को महसूस किया और दुनिया तक पहुंचा दिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मिट्टी से उठकर सितारे छूने के जज्बा, उसी का नाम है आनंद बख्शी। वो कलाम के सिपाही, जज्बात के सौदागर, जिन्होंने हर दिल की बात अपने गीतों में बयान की।

आनंद बख्शी का जन्म रावलपिंडी में एक ब्राह्मण परिवार में 21 जुलाई 1930 को हुआ। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय उनका पूरा परिवार भारत आ गया और दिल्ली में रहने लगा। उनकी मां उन्हें प्यार से नंद पुकारती थी और पिता उन्हें प्यार से अजीज या अजीजी और रिश्तेदार नंदो कहते थे। बख्शी परिवार चिट्टियां हिटियां मोहल्ला कुतुबुद्दीन रावलपिंडी में एक 3 मंजिला घर में रहता था। इस घर को दरोगा जी का घर या दरोगा जी की कोठी के नाम से जाना जाता था। नंद का नाम रावलपिंडी के उर्दू मीडियम और उसके बाद कैम्ब्रिज कॉलेज में लिखा दिया गया। उर्दू मीडियम से पढ़ाई करने के बाद उनका नाम जो आनंद प्रकाश था।

14 साल की उम्र में आनंद बख्शी कराची में रॉयल इंडियन नेवी में शामिल हो गई। वे 1944 में रॉयल इंडियन नेवी में कराची बंदरगाह पर बॉय के रूप पर भर्ती हुए और 5 अप्रैल 1946 तक वहां रहे। इसके बाद वो आर्मी में शामिल हुए। वो 2 अक्टूबर 1947 का दिन था जब भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे की त्रासदी का शिकार ये परिवार रातों रात रिफ्यूजी की तरह भारत पहुंचा। बख्शी परिवार एक डकोटा विमान से रावलपिंडी से सुरक्षित दिल्ली आ गया, क्योंकि आनंद के बाबूजी पुलिस के सुपरिंटेंडेंट के साथ पंजाब की जेलों लाहौर और रावलपिंडी के इंचार्ज थे।

नंद की उम्र 17 बरस की थी जब 12 अप्रैल 1950 को वो मुंबई आ गए थे और उसी साल उन्होंने गायक और लिरिसिस्ट के तौर पर गाना और लिखना शुरू कर दिया। भारत पहुंचने के बाद वो भारतीय फौज में बतौर आनंद प्रकाश शामिल हो गए। जब 1947 से 1950 के बीच फौज में नौकरी करते हुए आनंद प्रकाश ने पहली बार कविताएं लिखना शुरू किया तो उन्होंने कविताओं के नीचे दस्तखत किए आनंद प्रकाश बख्शी। आनंद प्रकाश फिल्मों में बतौर गायक अपनी पहचान बनाने की हसरत रखते थे पर दुनिया ने उनके लिखे गीतों को इस कदर पसंद किया कि वो एक मशहूर गीतकार बन गए। हालांकि उन्होंने अपने लिखे कई गीतों को आवाज भी दी। जगत मुसाफिर गाना, लगा है अनजाना और बागों में बहार आई गीत इन्हीं की आवाज में फिल्माया गया है।

1956 में आनंद प्रकाश बख्शी ने अपनी मर्जी से फौज की नौकरी छोड़ दी। अब उनकी आंखों में बस फिल्मी दुनिया में अपने नाम की पहचान कायम करने की एक जिद सी सवार हो चुकी थी। गीतकार बनने की इस जिद के साथ भूतपूर्व फौजी के रूप में उनके पास कैप्टन वर्मा की सिफारिश की चिट्ठी, करीब 60 कविताओं का संग्रह और उनके गुरु बिस्मिल सईदी के साथ के तौर पर एक मजबूत हौसला भी था। बख्शी साहब का इरादा पक्का था। उन्होंने तय कर लिया था कि मैं एक कलाकार बन जाऊंगा, फिर मैं टैक्सी चलाऊंगा, पर मैं खाली हाथ यहाँ से वापस घर नहीं लौटूंगा। उस वक्त तक उनकी शादी भी हो चुकी थी।

आनंद बख्शी मुंबई में काम की तलाश में आ तो गए, लेकिन यहाँ रहने के लिए उनके पास कोई मुकम्मल जगह नहीं थी, इसलिए सबसे पहले वे दादर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में रहने लगे। कुछ ही दिन बाद उन्होंने दादर गेस्ट हाउस तुलसी पाइप रोड में एक कमरा किराए पर ले लिया। इसके बाद वह खार पश्चिम के होटल एवरग्रीन में रहने लगे। इन दिनों वे सारा दिन बस गाने ही लिखते रहते थे। उनके आशियाने के आसपास कई उस वक्त के नामचीन संगीत कलाकारों के भी घर थे, जिसमें से सचिन देव बर्मन खार में रहते थे, जबकि बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उनकी पत्नी उसी होटल एवरग्रीन में ही रहते थे। काम की तलाश में भटक रहे आनंद बख्शी अपनी कविताएं और गाने गाकर आसपास के लोगों को अपनी कला से खुश करते थे। शब्दों के जादूगर आनंद बख्शी को माँ सरस्वती से विशेष आशीर्वाद मिला था। यही वजह थी कि केवल मात्र 8 मिनट में सुपर हिट हुए गानों को लिख दिया करते थे। आनंद कभी लिरिसिस्ट बनना ही नहीं चाहते थे, दरअसल वो गायक बनने का सपना लिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि उनकी मंजिल कहीं और ही थी। उन्होंने गाने लिखने शुरू किए और अपने शब्दों का जादू चलाकर करोड़ों लोगों का दिल जीता।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
2: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना।

0: गीतकार एवं गायक आनंद बख्शी अपनी सफलता का श्रेय भगवान दादा को देते हैं। उनका इस बारे में कहना था कि जब मैं पहली बार पर्दे पर अपना नाम देखा तो खुशी के मारे मेरी आंखें भर आई। आज अगर मैं एक कामयाब गीतकार माना जाता हूं तो वो भगवान दादा की वजह से है। उन्हें अपना पहला ब्रेक भगवान दादा द्वारा अभिनीत ब्रिजमोहन की फिल्म भला आदमी 1958 में गीत लिखने से मिला। उन्हें 4 गानों के लिए 150 रुपए का भुगतान किया गया था। उन्होंने इस फिल्म में संगीत निर्देशक निसार बाजमी के लिए 4 गाने लिखे। इस फिल्म में उनका पहला गाना धरती के लाल ना कर इतना मलाल था, जिसे 9 नवंबर 1956 को ऑल इंडिया रेडियो इंटरव्यू में उनकी अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। इस फिल्म के पोस्टर में उनका नाम गलती से बख्शी की जगह बख्शी लिख दिया गया और इस तरह से वह फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा के लिए आनंद बख्शी की जगह आनंद बख्शी हो गई।
1: रुक रुक, रुक रुक, रुक रुक, रुक रुक, जान

आनंद बख्शी ने 1962 से लेकर 2002 तक करीब 600 से ज्यादा फिल्मों के लिए तकरीबन 3300 से ज्यादा गाने लिखे। उनके गानों के बोल में जो जादू है वो आज भी लोगों के दिमाग पर चढ़ा हुआ है। आनंद बख्शी के गानों में भले ही खूब सादगी हो, लेकिन वो असल जिंदगी में बहुत ही शरारती हुआ करते थे। एक दिन उन पर उनकी शरारत काफी भारी पड़ गई थी। आनंद ने इंडस्ट्री के मशहूर और बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर के साथ काम किया। हालांकि उनकी जोड़ी आरडी वर्मन के साथ खूब जमी। उन दोनों ने मिलकर कई शानदार गाने इस बॉलीवुड को दिए। फिल्म एक दूजे के लिए के गाने, तेरे मेरे बीच में, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ओम शांति ओम, आदमी मुसाफिर है, हम तुम्हें कमरे में बंद हो, जैसे अनगिनत गीतों को इस जोड़ी ने मिलकर सजाया। आनंद बख्शी को रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म फेयर अवार्ड के 40 नॉमिनेशन मिले। वहीं 4 बार इस अवार्ड से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त 2000 में जी सेने अवार्ड, IIFA अवार्ड 2000 में मिले।

0: मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में। ये संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए लिखा बख्शी जी का पहला गाना था और 29 जुलाई 1963 को रिकॉर्ड हुआ था। किशोर कुमार ने इसे अपने सबसे पसंदीदा गानों में शामिल किया था। पूरे देश में हिट हुई उनकी फिल्म थी जब जब फूल खिले, जो 1965 में आई थी। इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर आनंद बख्शी की सुपरहिट फिल्में छाती चली गई। कुछ फिल्मों के नाम है फर्ज, राजा और रंक, तकदीर, जीने की राह। आराधना वो फिल्म है जिससे राजेश खन्ना के स्टारडम का रास्ता तैयार हुआ और उसके गीत भी आनंद बख्शी ने ही लिखे थे, जो सुपरहिट साबित हुए। आनंद बख्शी के लिरिक्स की नजाकत और खूबसूरती के चलते लोग उन्हें शब्दों का वाजीगर भी कहा करते थे। उन्होंने अपने 7 दशक के करियर में बॉलीवुड को करीब 4000 से अधिक गाने दिए। इन्हें लिखे गीतों के बोल इन्हें सरल और भावना प्रधान होते थे कि आम आदमी की रूह को छू लेते थे। हर मानवीय संवेदना के ऊपर अलग अंदाज के साथ इनके लिखे गीत सुनने को मिल जाते थे। यही वजह रही कि उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला। ये उनके लिए लोगों का प्यार ही था जिसकी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा 41 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 4 बार के फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता रहे। आनंद बख्शी भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके गानों के जरिए वो हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। गायक बदलते गए और संगीतकार भी बदलते गए, लेकिन आनंद बख्शी ने अपने कलम का तिलिस्म बरकरार रखा।
1: ओ मेरी महबूबा।

एक के बाद एक हिट फिल्में आती चली गई। इसके बाद गीतकार आनंद बख्शी फिल्मी दुनिया में बतौरी गीतकार एक बड़ा नाम बन चुके थे। इन्होंने रोशन, एसडी बर्मन, एस मोहिंदर और नौशाद और आने वाले 45 सालों में तकरीबन 95 संगीतकारों के साथ काम किया। उन्होंने कुल 303 फिल्में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, 99 फिल्में राहुल देव बर्मन के साथ, 34 फिल्में कल्याण जी आनंद जी के साथ और 14 फिल्में सचिन देव बर्मन के साथ मिलकर फिल्मों में जमकर अपनी पारी खेली। आनंद बख्शी अपने आखिरी समय में दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। दरअसल उन्हें स्मोकिंग की आदत थी, जो उनकी मौत की वजह बनी। आनंद बख्शी ने अपना आखिरी गाना फरवरी 2002 में लिखा। ये गाना निर्देशक सुभाष गई और संगीतकार अनु मलिक के लिए था। ये गाना था बुले शाह तेरे इश्क नचाया। उस वक्त वो बुखार में थे, बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। उन्हें 3-3 कंबल उड़ाए गए थे। कमजोरी और बुखार की वजह से वो कांप रहे थे। अस्थमा की वजह से उनकी सांस तेज तेज चल रही थी। 30 मार्च 2002 को आनंद बख्शी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गए अनगिनत बेहतरीन गाने, जिनके जरिए वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।

तो दोस्तों, आज का ये सफर हमारे साथ यहीं तक का था। जैसे आनंद बख्शी के लिखे हर लफ्ज में एक कहानी छिपी होती थी, वैसे ही हमारी ये छोटी सी मुलाकात भी एक याद बनकर आपके दिल में रह जाएगी। आपने हमारे साथ ये पल बिताए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। जैसे उन्होंने लिखा था, जिंदगी की राहों में कुछ पल हमेशा याद रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इसके साथ

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 9। पेश किया आरजे किन्नी ने और आज का कार्यक्रम आधारित था लिरिसिस्ट आनंद बख्शी जी पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, निर्देशन व एडिट किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की, जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी ओर भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हमसफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहेंगे हमारे मेहमान राजेंद्र रहबर। आप किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज नहीं। रहबर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया जी।
0: आपके कलम से निकली एक नज्म है, तेरी खुशबू में बसी खत।
1: मैं जलाता कैसे?
0: हाँ बिल्कुल, हम अपनी बातचीत इसी नज्म से शुरू करते हैं।
1: शुक्रिया।

0: रेवर साहब, क्या तसव्वुर रहा होगा उस वक्त जब आपने ये नज़्म तैयार करके अपने सुनने वालों तक पहुंचाई?
1: बात यूं है मराठा साहब कि आमतौर पर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे उन ख़तों को जो उसे उसने बड़ी देर संभाल कर रखा होता है उन्हें ज़ाया करने की, उन्हें फाड़ देने की या जला देने की नौबत आ जाती है। तो ये एक सदियों का भटकता हुआ प्रश्न था जिसका जवाब मैंने दिया है कि उसे क्यों ना गंगा पवित्र नदी है, हम कोई हमारी धार्मिक किताब जैसे गीता है उसको दीमक चाट जाए तो हम उसे बहते हुए पानी में बहा देते हैं। तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना उन खतों को गंगा में बहाया जाए
0: जबकि गंगा का पानी भी निर्मल है।
1: हाँ, बहुत पवित्र माना जाता है।
0: और फिर मखमली आवाज जगजीत सिंह से कैसे राबिता हुआ और उन्होंने अपनी आवाज बख्शी और मुझे लगता है कि काफी मशहूर हुई ये नज़्म आपकी?
1: हाँ हाँ, ये पिछले 30 साल से जगजीत सिंह गा रहे थे इसको, 1980 से लेकर टिल हिज डेथ उन्होंने इसे गाया है। तो मैं चंडीगढ़ में रहा करता था और मेरे पड़ोस में एक शायर साहब रहते थे बड़े मशहूर, प्रेम वार बर्टनी, उन्होंने 22 फिल्मों के गाने भी लिखे थे बॉलीवुड में, और वो बाद में चंडीगढ़ सेटल हो गए तो शाम को हमारी मुलाकात अक्सर हो जाती थी। तो ये नज़म मैंने उन्हें सुनाई, उन्होंने फौरन इसे सुनते ही कहा कि इस नज़म को जगजीत सिंह जी गाना पसंद करेंगे। तो उन्होंने मुझे जगजीत सिंह का एड्रेस भी अता फरमाया और कहा कि इसके कितने स्टेंजे हैं। मैंने कहा कि इसके 8 स्टेंजा हैं। तो उन्होंने कहा कि 3 स्टेंजा जगजीत सिंह को भेज दें
0: जी।
1: मैंने कहा कि वो आप ही सिलेक्ट कर दें क्योंकि उनका बैकग्राउंड बॉम्बे की थी, जगजीत सिंह की वो समझता था कैसी चीज़ पसंद करते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 स्टेंजा सिलेक्ट कर दूँगा, लेकिन कुछ मुद्दत के बाद उनकी मौत वाक़या हो गई और मैंने फिर खुद ही जगजीत सिंह को ये किताब भेजी। मल्हार किताब मेरी छप के आई थी उन दिनों, उसमें ये किताब शामिल थी। ये 75-79 की बात है
0: जी।
1: तो जगजीत सिंह ने इसे गाना शुरू कर दिया उसी वक्त, और मैंने उनके 2 एल्बम देखे, एक कनाडा का बना हुआ था एक इंग्लैंड का, उन दोनों में ये नज़म शामिल थी। फिर लेकिन उन्होंने 3 बंद गाए इसमें से, तो नज़म कुछ 2 मिनट और 28 सेकंड की टोटल अवधि थी उसकी, जो इनसफिशिएंट मालूम होती थी। तो फिर मैंने पूरी नज़म उनको भेज दी, उसमें से उन्होंने 4 स्टेंजा सिलेक्ट करके गाए और अब ये 4.25 मिनट की इसकी अवधि है।
0: जी जी, इस तरह से ये नज़्म काफ़ी लोगों ने पसंद इस नज़्म को किया।
1: हाँ, इस नज़्म को बेपनाह मकबूलियत मिली है, जैसे सहल दयानवी की नज़म ताजमहल को या फिर हफीज़ जलंधरी की नज़म अभी तो मैं जवान हूँ। तो मेरी नज़म भी ख़ास तौर पर नई जनरेशनों में ये बहुत मकबूल है और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दूसरे देशों में भी लोग इसको जानते पहचानते हैं और पसंद करते हैं।
0: रेवर साहब, आपकी लिखाई में जब आप कलम से अपना लिखना शुरू करते हैं तो उर्दू को इस्तेमाल में लाते हैं, उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है, कहाँ से आपने उर्दू सीखा? और
1: ऐसे है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ सारी तालीम उर्दू ही में दी जाती थी, हमने हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ ये सभी सब्जेक्ट उर्दू में पढ़े और हमारे स्कूल की दीवारों के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे उर्दू के शेर लिखे रहते थे। जैसे पहली जमात हमारी जो थी उसकी एक दीवार पर शेर लिखा हुआ था कि कदर सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तो हमारे चौथी
0: तौर पे स्कूलों में इस तरह के अशआर लिखे जाते थे
1: उन दिनों, होते थे, अब तो नहीं होते ऐसे अशआर, अब तो स्लोगन से होते हैं या चार्ट लगे होते हैं। तो हमारे चौथी क्लास के मौलवी साहब थे, मौलवी अब्दुल कादर, वो एक शेर गुनगुनाया करते थे इस क्लास में पढ़ाते थे, उधर चक्कर लगाते वो शेर बोलते जाते थे कि वो शेर यूं था कि या इलाही मिट ना जाए दर्द दिल, मिटने वालों को मिटाए दर्द दिल। ये शेर वो गुनगुनाया करते थे तो मुझे भी याद हो गया और कई देर तक ये मुझे आज भी याद है। और एक हमारे ये भी रिवाज था कि क्लास को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था और शेरों का मुकाबला कराया जाता था।
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
1: जैसे आजकल अंताक्षरी का रिवाज चल पड़ा है, इसी तरह वो शेरों का मुकाबला होता था और हमें कई हमारे जो सबक था वो शेरों की सूरत में भी याद कराया जाता था। जैसे 8 शहरों के नाम एक शेर में आ जाते हैं, ये शहर शायद अफगानिस्तान में है या ईरान में, ईरान के भी कुछ शहर हैं, उनका यूं सा शेर, समरकंद, कोकंद, खेवा, खुजंद, ये चारों
0: ये सारे शहर हैं,
1: शहर हैं।
0: जी जी।
1: समरकंद, कोकंद, खेवा, खुजंद, बदख्शां, बुखारा, बलख, ताशकंद,
0: बिल्कुल सारे शहर है अफगानिस्तान, ताशकंद जैसे, बुखारा वगैरह। जी
1: हाँ जी, बलख बुखारा मशहूर जगह हैं। तो ये शेर हमें आज भी याद है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने नाम हमें शेर की सूरत में याद कराए थे। और शहनशाह अकबर ने जो हिंदुस्तान में फतूहात हासिल की थी, उनके बारे में भी एक शेर मुझे आज याद है जो मास्टर जी ने हमें याद कराया था। फतूहात अकबर जो था शाह हिंद, उड़ीसा व बंगाल, गुजरात, सिंध, ये वो इलाके थे जो अकबर ने फतह किए थे। तो वे भी एक शेर में हमें याद हैं आज तक।
0: रबर साहब, हम अपनी बातचीत तो जारी रखेंगे आपके साथ, जो आपकी ज़िंदगी का सफ़र है इसके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आपकी पसंद का कोई गाना हो जो हम अपने तमाम सुनने वालों को उन तक पहुँचाना चाहेंगे।
1: हाँ जी, मुझे ये एक हीर रांझा फिल्म का गाना है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये मुझे बेहद पसंद है।
0: बिल्कुल, रफ़ी साहब की आवाज़ है।
1: हाँ जी,
0: बहुत ही शानदार गाना है, और इस फिल्म में राजकुमार हैं और इस पर पिक्चराइज था ये गाना, मरहूम राजकुमार। तो आपको हम ये गाना सुनाते हैं।

0: जाहिर है कि जब इस तरह के गाने सुनते हैं जैसे ये गाना अभी आपने आपकी चॉइस पे हमने सुनाया, कस्मे वादे प्यार वफा सब आते हैं बातों का क्या, तो इस तरह का आपका मिजाज है शेर लिखने का। कुछ किताबें होंगी जिनमें इस तरह के शेर दर्ज हैं?
1: हाँ, मेरी 7-8 किताबें छपी हैं। पहली किताब तो थी मेरी आगोश गुल, वो एक तज़किरा था शिमला हिल्स के 22 उर्दू शायरों का। उसमें मैंने जिक्र किया है, उनका कलाम शाया किया है, उनके फ़ोटो शाया किए हैं, उनके हालात ज़िंदगी शाया किए हैं। उसके बाद फिर 1962 में मेरा अपना मजमू कलाम कलस के नाम से शाया हुआ था। उसके बाद 75 में मल्हार नाम से मेरी एक किताब देवनागरी स्क्रिप्ट में शाया हुई थी। फिर 78 में मेरी किताब और शाम ढल गई के नाम से उर्दू में शाया हुई थी, इसे बिहार उर्दू अकेडमी ने अवार्ड दिया था। और फिर 97 में मेरी एक किताब ज़ेब सुफन के नाम से उर्दू में शाया हुई थी, इसे लैंग्वेज डिपार्टमेंट पंजाब ने बेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ द ईयर 1997 करार देते हुए मुझे अवार्ड दिया था। उसके बाद मेरी किताब शाया हुई, उसका नाम था तेरे खुशबू में बसे ख़त। अच्छा, ये तेरे खुशबू में बसे ख़त नाम मैंने कैसे रखा, ये भी एक दिलचस्प वाक्या है कि टी सीरीज़ ने अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में एक कैसेट निकाली, उसका नाम रखा उन्होंने तेरे खुशबू में बसे ख़त। उसमें मेरी पोएम भी है अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। फिर उसके बाद HMV ने सारे गामा ने एक निकाली एल्बम, उसका नाम भी रखा तेरे खुशबू में बसे ख़त। तो फिर मेरा मजमूआ कलाम छपने वाला था उन दिनों, मैंने भी नाम रख दिया तेरे खुशबू में बसे ख़त। तो उसके बाद फिर 2008 में मेरी एक किताब याद आऊँगा, हिंदी और उर्दू दोनों ऑडिशन हैं उसके, वो छपी है।
0: आमतौर पे हम कहते हैं कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, आप इस बुलंदी पे हैं, आप ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगे?
1: मेरी जो अहलिया हैं वो शायर तो नहीं है, भजन वगैरह गाती
0: रहती
1: हैं,
0: लेकिन आपको सपोर्ट तो करती हैं।
1: हाँ, मेरे मिलने वाले जो आते हैं शायर लोग बड़ी तादाद में आते हैं।
0: यहाँ पे आपने एहतियात बरतना होगा क्योंकि कहीं वो नाराज ना हो जाए।
1: हाँ, नहीं, वो उनको चाय वगैरह पिलाने की जिम्मेवारी मेरे दोस्तों को होनी होती है।
0: रहबर साहब, कभी आपको गुस्सा आता है?
1: बहुत कम। कहते हैं जो दरवेश लोग होते हैं ना, वो अपना गुस्सा अपनी जान पर ही निकालते हैं, तो मैं भी शायद ऐसा ही करता हूँ।
0: जी, उम्र के इस पड़ाव में हैं आप और यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी क्या कुछ काम हो रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है?
1: जो नज़्म मैंने कहनी है वो अभी नहीं हुई है शायद, तो एक शेर भी मेरा इस तरफ इशारा करता है। वो शेर यूँ है, सुनने को जिसे गोश बाराबाज है दुनिया, सुनने को जिसे गोश बाराबाज है दुनिया, वो गीत अभी साज के पर्दों में छुपा है।
0: जी,
1: तो उम्मीद रखनी चाहिए शायद वो गीत भी कभी साज के पर्दों से बाहर आए। तो मेरी आमतौर पर ये आदत है कि मैं सुबह के वक्त 3 बजे 3:30 बजे उठ के लिखता हूँ, और जो चीज़ उस वक्त लिखी जाती है वो बहुत अच्छी होती है, और जो चीज़ लिखने की तमन्ना है वो किस वक्त बाहर आ जाएगी ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो शायराना तबीयत या परमात्मा के हाथ में ही है ये सारी बात।
0: जी जी जी, आपका कोई मनपसंद शेर होगा जो आप यहाँ कहना चाहेंगे, कोई आपकी?
1: पिछले दिनों मैंने एक अजीब रंग में गजल कही है, जो मैंने जिस रंग में मैंने आज तक नहीं कही, यानी हास्य रस में। उर्दू शायरी संजीदा शायरी होती है आमतौर पर, और मैं भी संजीदा शायरी ही लिखता रहा हूँ, लेकिन एक मजाया नज़म पता नहीं कहाँ से गजल उभर के आ गई पिछले दिनों, बिल्कुल नई है, कि दोस्तों से फरेब खाया कर और फिर दोस्ती निभाया कर। दूसरा शेर है कि हो के दिन भर के काम से फारिग, हो के दिन भर के काम से फारिग, शाम को मैकदे भी जाया कर।
0: क्या बात है,
1: मशवरे हैं इसमें, गलत मशवरे ज्यादा है। हो के दिन भर के काम से फारिग, शाम को मैकदे भी जाया कर, और जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, एक दिन छोड़ कर नहाया कर।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
1: जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, एक दिन छोड़ कर नहाया कर। एक शायर को आज मैंने कहा, शायरों को आदत होती है जबरदस्ती शेर सुनाने शुरू कर देते हैं
0: जबरदस्ती।
1: हमारे एक शायर दोस्त से, प्रोफेसर बिमल कृष्ण अश्क, वो कहा करते थे, लो रैबर भाई 5 गजलें सुनो, तो 5 गजलों के लिए वो बुक कर लेते थे।
0: जी, जी।
1: तो ये शेर उसी तरफ इशारा करता है कि एक शायर को आज मैंने कहा, बिन कहे शेर मत सुनाया कर, और देख कर राह में हसीनों को, रास्ते से भटक न जाया
0: क्या
1: कर।
0: बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
1: और एक शेर और याद आ गया इसका मुझे, वो भी सुन लीजिए कि सच्चे दिल से तुम्हें दुआ देंगे, सच्चे दिल से तुम्हें दुआ देंगे, हम फकीरों को कुछ खिलाया कर।
0: क्या बात है जी जी जी आपकी नजर में औरत क्या है एक तख्लीकार होने के नाते?
1: उर्दू शायरी जो है, जहाँ तक उर्दू शायरी का तअल्लुक है, मैं तो उर्दू से ही वाबस्ता हूँ और उर्दू ही का खादिम हूँ। उर्दू का मिजाज जो है ये लड़कपन से आशकाना रहा है और रहेगा। अगर ये रोमांटिक शायरी को हटा दिया जाए उर्दू शायरी में से, तो मेरा ख्याल बाकी जो है वो इतना अपीलिंग नहीं रह जाता। इसलिए औरत का जिक्र हमारे शेरों में अक्सर होता है और हमारे तमाम बड़े शायरों ने रोमांटिक शेर लिखे हैं और गालिब ज़ौक मोमेंट से लेकर आज
0: जी,
1: तक भी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लिखते आ रहे हैं।
0: और मुझे लगता है कि कामयाबी भी हासिल होती है इस तरह के शेर।
1: ये जो रुमानी शायरी होती है अल्टीमेटली यही जिंदा रहती है,
0: क्योंकि आपके जो जितने भी आपकी लिखाई हम पढ़ते हैं उसमें भी इस तरह का जिक्र है, कहीं कहीं जगह पे मिलता है हमको।
1: ये एक ऐसा जज्बा है जो हर वक्त इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा कायम रहता है, वो किसी शक्ल में भी हो, तो ये भी मोहब्बत का एक इजहार ही है। लेकिन शेर को पढ़ते वक्त आप उसे चाहे जिनसी मोहब्बत की तरफ ले जाएं या परमात्मा की मोहब्बत की तरफ ले जाएं, दोनों तरफ उनके मीनिंग निकलते होते हैं आमतौर पर।
0: जी जी जी एक तो जगजीत सिंह साहब ने आपकी नज्म को अपनी जुबान, अपनी मीठी सुरीली आवाज दी, इसके अलावा किसी फनकार से आपका कोई कलाम?
1: अनुराधा पौडवाल ने गाया है और एक नॉर्वे में रहते हैं गायक जहान दत्ता उनका नाम है, उन्होंने मेरी एक गजल गाई है, वो उसका नाम गजल यूं है कि बस चंद ही दिनों के थे डेरे चले गए, खाना बदोश लोग सवेरे चले गए, हाथों में अपने जाल सुनहरी लिए हुए गहरे समंदरों के मछेरे चले गए, कुछ मैकदे की समत गए झूमते हुए, कुछ मन चले फकीर के डेरे चले गए। ये गजल उन्होंने गाई है। उसके अलावा ये पठानकोट में बड़े मशहूर एक गायक रहते हैं कुलदीप राय, वो भी मेरा कलाम गाते हैं, तीन चार चीज़ें गाते हैं वो मेरी, आगे उनके शागिर्द भी गाते हैं।
0: जी जी जी आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं, क्या इस तरह का आपने कोई आगे रखा है कि कोई स्कूल या कोई अटेंड करेंगे जहाँ पे लोग आपके पास सीखने आए?
1: ऐसे है कि ज़ाती तौर पर लोग आते रहते हैं, मेरे पास कोई स्कूल वाला सिस्टम नहीं है। जो आता है और मुझसे कोई मशवरा व तलब करता है तो वो मैं उसे ज़रूर बताता हूँ जितना मुझे आता है। तो मैं कोई उस्ताद शायर नहीं समझता अपने आप को कभी, क्योंकि बड़े बड़े उस्ताद हो चुके हैं, हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं दोस्ताना मशवरे ज़रूर देता हूँ और जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उन्हें अपना शागिर्द नहीं करता कभी, सिर्फ दोस्त समझता हूँ उन्हें।
0: जी रेवर साहब, आपकी चॉइस पे कोई गाना हो जो यहाँ हमारे सुनने वालों को हम पेश करें?
1: लग जा गले, ये लता मंगेशकर जी का है, लग जा गले।
0: ये गाना बड़ा शानदार है, सुरीला गाना है।
1: हाँ जी,
0: तो ये गाना आपको पसंद है?
1: हाँ जी,
0: सुनना चाहेंगे?
1: जरूर सुनना चाहूँगा और मेरे जो श्रोता हैं वो भी सुनेंगे तो खुश होंगे इसको।

0: चलते चलते चूँकि हमारे इस प्रोग्राम का समय मुकम्मल हुआ चाहता है, तो कोई पैगाम देना चाहेंगे जो आजकल के शायर हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम होगा आपकी तरफ से?
1: उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो छंद शास्त्र ज़रूर सीखें। खुली शायरी भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन इतनी नहीं जितनी छंदबद्ध शायरी को पसंद किया जाता है। उसमें जब रदीफ और काफ़िया आते हैं, टणकता हुआ काफ़िया हो, जैसे ये मेरे ख्याल सा है, मेरे ख्वाब जैसा है, ख्वाब इसमें काफ़िया है, जैसा है रदीफ, मेरे ख्याल सा है, मेरे ख्वाब जैसा है, तुम्हारा हुस्न महकते गुलाब जैसा है, तो ये जब काफ़िया और रदीफ आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। और खुली कविता हो तो वो इतनी प्रभावित नहीं करती सुनने वालों को, और जो शायर लोग लिखेंगे छंद शास्त्र के अंदर रह के, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी जाती है दूसरों की निस्बत।
0: जी, अपने रेडियो के बारे में एक सवाल चलते चलते आपसे पूछना चाहूँगा, करना चाहूँगा कि रेडियो भी आप सुनते हैं मैंने सुना है, और आकाशवाणी कठुआ आप सुनते हैं?
1: हाँ जी, सुनते हैं।
0: कोई यहाँ का
1: बहुत लोग
0: पॉपुलर प्रोग्राम है कोई जो आपको ज़्यादा पसंद है?
1: वो मैं जो प्रोग्राम ज़्यादा सुनता हूँ वो है यादें बन गई गीत।
0: जी,
1: वो शनिवार को आता है, शनिवार रात 10 बजे से 11 बजे तक वो मैं सुना करता हूँ। उसके अलावा और प्रोग्राम भी, गाने के फरमाइशी
0: प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में कोई राय देना चाहेंगे?
1: इस प्रोग्राम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बड़े इश्तियाक के साथ सुनता हूँ, कभी नागा नहीं डालता इसे सुनने में। और ये मेरा ख्याल है कि आम लोग भी इसे बहुत पसंद करते हैं, और अपनी अपनी जो उनकी यादें हैं वो यहाँ रिकॉर्ड करवाते हैं, और उसके साथ उनकी याद से मिलता जुलता गाना भी आप लगाते हैं, और ये आप ही की जेरे निगरानी होता है काम।
0: ड्राइवर साहब, आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में, आप हमारे यहाँ स्टूडियोज में तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके हैं काफ़ी मशकूर, बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारे प्रसारण पसंद आ रहे होंगे, खास करके जो हम अम्बाला के इतिहास के बारे में बात करते हैं, उन बातों की हम यहाँ चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं जो रखते हैं आपसे सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:46। आज की यह प्यारी सी बातचीत भी अब समापन की ओर बढ़ चली है। उम्मीद है इन लम्हों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपके दिन को थोड़ा और सार्थक और खुशनुमा बनाया होगा। हर दिन हम किसी खास विषय पर बात करते हैं, बात करने के बाद आपको सुनाते हैं कुछ पंक्तियां और कल के कार्यक्रमों का विवरण, और साथ में हमारे स्टूडियो का नंबर ताकि आप अपना फीडबैक, अपनी जानकारी हम तक पहुंचा सके। तो चलिए, आज हम एक खास और बेहद दिलचस्प विषय पर करते हैं बात। आज का विषय है अकेलापन और एकांत में बहुत फर्क होता है और ये फर्क समझना जरूरी है। आज के दौर में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर लगातार जुड़ा रहना चाहता है, वहीं थोड़ी देर अकेले बैठना भी लोगों को असहज कर देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि एकांत कोई सजा नहीं, बल्कि यह खुद को समझने और अपने विचारों को सुलझाने का एक अनमोल मौका है। अकेलापन जहां हमें उदास और खाली महसूस कराता है, वहीं एकांत हमें खुद को अपने करीब लाता है। जो लोग समय समय पर अपने लिए एकांत के पल निकालते हैं, चाहे वे सुबह की सैर हो, कुछ देर की खामोशी हो, या फिर अकेले बैठकर सोचने या लिखने का समय हो, वे अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और सही फैसले ले पाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर पल किसी न किसी के साथ बिताया जाए, खुद के साथ बिताया गया समय भी उतना ही कीमती है, क्योंकि यह समय हमने अपनी असली जरूरतों और भावनाओं को समझने का मौका देता है। दोस्तों, आइए हम सब अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा समय अपने लिए, अपने एकांत के लिए भी निकालें, क्योंकि जो अपने साथ रहना सीख लेता है, वही सच में किसी और के साथ भी सुकून के साथ रह पाता है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी इससे मिली होगी। तो अब वो 4 पंक्तियां जो आप सभी के नाम हर दिन में ले आता हूं, आज भी जो पंक्तियां आप सभी को समर्पित है, वो पंक्तियां यूं है। खुद से मिलने का भी अपना एक मजा होता है, खुद से मिलने का भी अपना एक मजा होता है, खामोशी में भी कभी कभी बड़ा जवाब होता है। खुद से मिलने का भी अपना एक मजा होता है, खामोशी में भी कभी कभी बड़ा जवाब होता है। वितस्ता भी तो अकेले बहती है अपनी राह पर, वितस्ता भी तो अकेली बहती है अपने राह पर, यही सिखाती है एकांत में भी सुकून का भाव होता है, यही सिखाती है एकांत में भी सुकून का भाव होता है। जी हाँ दोस्तों, ये थे आज के 4 पंक्तियां आप सभी के नाम, और आपको कल के कार्यक्रम का विवरण देता हूं। कल 6 अक्टूबर 2026 मंगलवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर, वंदे मातरम से हम करते हैं शुरुआत और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत, 7:05 पर कार्यक्रम घर परिवार होगा, कल होगा एपिसोड 4। हमारे साथ होंगी आरती कुमार, कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे RJ किरणी। 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय होता है, कल हम आपके लिए ला रहे हैं कहानी एपिसोड 7 और शीर्षक होगा हाथ और साथ। इस कहानी को प्रस्तुत करेंगे RJ शिवानी। 9:30 नारी और सम्मान एपिसोड 7 होगा, विमेन्स डे पर ये कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया था, इसका पुनः प्रसारण कल 9:30 होगा, पेश करेंगे RJ किरणी। और 10:05 पर सरफरोशी की तमन्ना के अंतर्गत आप सुनेंगे एपिसोड 3, हम बात करेंगे अभिनंदन वर्धमान की।
कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7 बजे होगा कार्यक्रम तैरते बादलों में एक शाम, पेश करेंगे नरेश शर्मा, और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है तुम्हारी पनाहों में। आशा करते हैं कि कल के कार्यक्रम आपको पसंद आएंगे, अपना फीडबैक हमें जरूर भेजेंगे, और अगर आप अपने अनुभव एक्सपीरियंस से अंबाला की जनता को कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप अपने बारे में हमें हमारे स्टूडियो के नंबर पर लिखिए, हम आपको आमंत्रण देंगे स्टूडियो में। और हमारे स्टूडियो का नंबर नोट कर दीजिए, हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी जो आप तक हमने पहुंचाई, इसको तैयार किया टीम रेडियो विद आस्था के कैजुअल अनाउंसर अनु ने। तो दोस्तों बस यहीं तक आज का ये वक्त आपके साथ बिताकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद है ये बातचीत आपके मन में एकांत के प्रति एक नया नजरिया जगा गई होगी। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, लेता हूं आपसे विदा। FM 90.0 MHz रेडियो विद आस्था के साथ बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।